फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। आज के प्रसारण में आपका स्वागत है।

हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रही हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: मन का सच्चा सुख छिपा है इंद्रिय संयम में। संयम का अर्थ है शक्ति के अपव्यय को रोकना। ये अपव्यय हमारी इंद्रियों द्वारा ही होता है। इन इंद्रियों में सर्व प्रमुख है जीभा। ईश्वर ने मनुष्य को जीभा द्वारा जो एक सबसे बड़ी शक्ति प्रदान की है वो है वाणी शक्ति। जीभा द्वारा ही इस शक्ति का स्रोत फूटता है। इसकी धारा को अजस्र और अखंड बनाए रखने के लिए हमें वाणी शक्ति के अपव्यय को रोकना पड़ेगा। कटु, निरर्थक और असत्य संभाषण से ही वाणी शक्ति का अपव्यय होता है। वाणी के द्वारा ही सज्जन और दुर्जन की पहचान होती है। वाणी के द्वारा ही व्यक्ति के चरित्र और उसके व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या कुरूप, बाल युवा हो बड़ी उम्र वाला हो, किसी पद पर आसीन हो या आम जनता हो, चाहे व्यक्ति कोई भी हो कैसा भी हो, उसकी मनुष्यता का पैमाना उसकी वाणी होती है। जैसे बसंत ऋतु के आते ही कौवा और कोयल की भिन्नता का परिचय मिल जाता है। जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। वाणी का प्रयोग प्रभावपूर्ण हो, वाणी के द्वारा हम किसी को मानसिक शांति प्रदान कर सकें, निराशा के गर्त में गिरे हुए को निकालकर उसे आशा और उत्साह की नई किरण दिखा सकें, उसे ही वाणी शक्ति का सदुपयोग कहा जाएगा। तुलसीदास ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप हो शीतल होए। हमारी वाणी द्वारा औरों को शीतलता महसूस होनी चाहिए। तीखे और कटु वचन वाणी का भूषण नहीं दूषण है। हमें यदि किसी को अपना बनाना है तो हमेशा मीठे वचनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, कठोर वचनों का त्याग करना चाहिए। कहा भी गया है, वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। वाणी शक्ति का सदुपयोग करके भगवान श्री कृष्ण ने हताश, निराश और जीवन से हारे हुए अर्जुन को उत्तिष्ठ कौन्तेय कहकर पुनः आत्मबल से निडरता के साथ उठ खड़े होने का आवाहन किया। गीता कृष्ण वाक्यानी के द्वारा श्री कृष्ण की सारगर्भित वाणी से निसृत गीता आज समग्र विश्व में जीवन संदेश के रूप में प्राप्त हो सकी। वाणी विचारों का आईना होती है। हमारे मन मस्तिष्क में चलने वाले विचार ही हमारी वाणी द्वारा बाहर निकलते हैं और इन्हीं विचारों का सदप्रभाव या दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता है। वाणी के माध्यम से ही व्यक्ति प्रसिद्धि की बुलंदियों को छू सकता है। इसी वाणी के दुष्प्रयोग से शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी सड़क की धूल फांकते नजर आता है। वाणी के द्वारा ही महात्मा गांधी ने जनता को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया था। युद्ध भूमि में जाते हुए सैनिकों में नया जोश और उत्साह बनाए रखने के लिए वीर रस से भरे गीत गाए जाते हैं। प्राचीन काल में चारण और भाट राजाओं के साथ युद्ध भूमि पर जाते थे। वाणी की ताकत से ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर भारत के आध्यात्म का परचम फहराया था। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य होना अपने आप में परम सौभाग्य की बात है और मनुष्य को वाणी के रूप में नायाब तोहफा दिया है ईश्वर ने। हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए।
0: अभी आपने सुना आज का चिंतन। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी। रचनाएं हैं संत कबीरदास की। संगीत श्री निवास खले का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं डॉक्टर बीएस राजपूत, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख उद्यानिकी। विषय है नवीन बाग लगाने की तैयारी।
1: जैसा कि अभी जो है मई और जून का जो है समय चल रहा है, और इस समय जो है किसान भाई उद्यान की फसलों के लिए जो नए बगीचे लगाने चाहते हैं उसकी तैयारी का उपयुक्त समय है। तो जो भी किसान भाई जो है नए बगीचे लगाने चाहते हैं वो इस समय जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से करना है, तो उसमें सबसे पहले जो है जो स्थल का चुनाव आता है के बगीचे के लिए जो है किस प्रकार की जो है खेत का चयन करें। जब खेत का चयन हो जाता है उसके बाद जो है बात आती है कि जो मिट्टी का नमूना जो है मिट्टी का सैंपल। जब अपन बात करते हैं बगीचे वाल लगाने के लिए जो है मिट्टी का सैंपल कम से कम 3 फीट गहराई से लिया जाता है, क्योंकि जो है पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें 4 से 5 फीट गहराई तक जाती हैं। तो इसके लिए जब मिट्टी का नमूना लेना है अपने को 1 एकड़ जमीन से 6 जगह से मिट्टी के नमूने लेने हैं, 3 फीट गहराई तक जो है खोदना है, और खोदने के बाद उसमें से एक जो गड्ढा है उसमें से आधा जो है किलो मिट्टी प्रति गड्ढे के हिसाब से मिट्टी लेना है अपने को, और पूरे जो है इस मिट्टी को ऐसे एक नीचे से ही नहीं लेना, ऊपर से कुरचते हुए नीचे 3 फीट तक पूरी मिट्टी लेना है जो है, जिससे जो है जो लेयर है जो मिट्टी की सभी लेयर उसमें जो है जो परत है वो उसकी मिट्टी आए, और उस मिट्टी को फिर इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद जो है उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद टोटल जो है ऐसे 3 किलो मिट्टी अगर अपन ने ली है उसमें से आधा किलो मिट्टी को जो है रखेंगे, बाकी मिट्टी को जो है वहीं पे जो है हटा देते हैं, डाल देते हैं जो है। तो इस प्रकार से नमूना लेके और इस नमूने को फिर जो है अपन एक जो कपड़े की थैली है उसमें जो है रख के उसमें किसान की जानकारी, कृषक का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, और इसी के साथ साथ खेत की जो जानकारी है कौन सा खेत है जो है, इससे पहले कौन सी उसमें फसल लगाई गई है, और आने वाले समय में अपन कौन सा बगीचा उसमें लगाना चाहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी जो है अपने को जो है उस थैली में जो है मिट्टी के सैंपल के नमूने के साथ डाल देना है, और नमूना फिर आप जहां चाहे वहां पे जो है उसको मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी करा सकते हैं आप, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जो है कृषि विभाग की उसमें भी करा सकते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भी करा सकते हैं, जहां पे आप कराना चाहें वहां करा सकते हैं। इसके बाद जो है बात आती है कि जो है अपने को गड्ढे जो है खोदना है, उसका लेआउट जो है बनवाना है। लेआउट किसी भी बगीचे का जो है लेआउट है वो जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बगीचा अपन जो है एक बार लगाते हैं और वो 50 साल 60 साल 30 साल लंबा समय तक चलता है, तो इसकी प्लानिंग जो है किसान भाइयों की बहुत अच्छी जो है कृषि एक्सपर्ट के साथ बैठकर ही जो है उनको बनाना चाहिए, उन्हीं से जो है हेल्प लेना चाहिए। तो अपन अगर सपोज आम का बगीचा लगाना चाहते हैं तो आम के बगीचे को उसमें जो है 2 प्रकार की जो है किस्में हैं जो है, एक सघन जो है किस्में हैं जो है जो ड्वार्फ किस्म बोलते हैं जिसको, जैसे आम्रपाली की अगर बात करेंगे तो उसको अपन जो है ऐसे 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं जो, तो इसमें अपन ऐसे 4 मीटर है 5 मीटर है इस हिसाब से जो है गड्ढे से गड्ढे की दूरी ले सकते हैं जो है, और लाइन के लाइन की दूरी। अगर दूसरी वैरायटी लगाना चाहते हैं, अगर आपका जो है लंगड़ा है या और दूसरी वैरायटी है तो 5 से 7 मीटर की जो है दूरी लेनी पड़ेगी इसमें। तो इस प्रकार से अपन जो है अगर और कोई जो है अमरूद की अगर अपन पौधे लगाना चाहते हैं तो उसमें 6 से 7 मीटर की दूरी जो है लेना है। इस दूरी पे अपने को जो है 3 फीट गहरा और 2 फीट जो है चौड़ा गड्ढा अपने को खोदना है, और उस वो मिट्टी को पूरी को अपन संपूर्ण मिट्टी को बाहर निकाल लेना। आम की बात करें तो अपने रायगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब जिले के हिसाब से जो है ऐसे अपने यहाँ लंगड़ा है जो है, आम्रपाली है, मल्लिका है जो है, दशहरी है, इस प्रकार की जो किस्में हैं जो है वो अपन लगा सकते हैं।

अभी आपने सुना कृषि चर्चा, वार्ताकार थे डॉक्टर B.S. राजपूत। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:40 पर सुनिएगा रामचरित मानस। देशगान का वक्त होगा 6:50। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे फिल्म फिजा के नगमे। सुबह 7:35 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। विषय होगा खेलेंगे बच्चे तो खिलेंगे बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर। 7:45 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा 9:00। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 9:55 और 11:55। इसका अनुप्रसारण होगा रायपुर केंद्र से। 10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक संगीत, कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। और विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण पहले 11:00 से 11:55 तक और फिर 12:00 से सुनिएगा दोपहर 2:00 तक। 2:00 हम आपको सुनवाएंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ, और उसके पश्चात आप सुनेंगे 2:15 से शाम 5:00 तक विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण। आज शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, शाम गजल 5:10 पर। 5:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00। 6:10 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। 6:45 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा किसान वाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा फसल अवशेष को जलाएं नहीं, सड़ाकर खाद बनाएं, खेत बचाओ अभियान। सुनिएगा नसीहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए मासिक पेंशन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। रात्रि 9:00 सुनिएगा विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण। 9:25 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर साइंस एंड टेक थीम विषय पर विशेष कार्यक्रम। विविध संगीत रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।

आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com। अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य

0: सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए रामचरितमानस। कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया।

रामचरितमानस का प्रसारण अभी आपने सुना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से FM 100.7 MHz पर 6:50 में। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशकाल। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: 47 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:05 में लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फिजा के नगमे। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण अलका याग्निक के

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं फिल्म फिजा के नगमे। अगला नगमा आशा भोसले के स्वर में, समीर की शब्द रचना है, संगीत अनु मलिक का।

0: आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: कार्यक्रम में आइए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए हुए इस गीत को। रचना है समीर की, संगीत अनु मलिक का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं फिल्म फिजा के नगमे। अंतिम नगमा सुनिधि चौहान करसन सरगाठिया के स्वर में, रचना है तेजपाल कौर की।

कार्यक्रम के अंत में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं जसपिंदर नरूला के स्वर में गुलजार की इस रचना को।

यह थी कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसके अंतर्गत आज आपने सुना फिल्म फिजा के नगमे। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। खेलेंगे बच्चे तो खिलेंगे बच्चे। साथियों, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बहुत आवश्यक है। खेल बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि खेलेंगे बच्चे तो खिलेंगे बच्चे। खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार भी है। खेल बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय बनाते हैं। नियमित रूप से खेलने से शरीर मजबूत होता है, हड्डियां और मांसपेशियां विकसित होती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और आज के समय में बच्चे मोबाइल और टीवी में अधिक समय बिताते हैं, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, और जो है खेल उन्हें इस समस्या से दूर रखते हैं। खेल बच्चों को सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। खेलों के दौरान बच्चों को नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। खेल तनाव को कम करता है और मन को प्रसन्न भी रखता है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। साथियों, खेल बच्चों को अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व और टीम भावना का पाठ पढ़ाते हैं। खेल के मैदान में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना सीखते हैं। वे हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सीखते हैं, जो जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ लोग मानते हैं कि खेल पढ़ाई में बाधा डालते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है। खेल बच्चों को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वे पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इसलिए पढ़ाई और खेल का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। साथियों, आज 11 जून है, जो आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ताकि सभी लोग, विशेष रूप से बच्चे, इसके लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सकें। इस क्षमता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। इस दिवस को अपनाने से मानवाधिकारों और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में खेल के सकारात्मक प्रभाव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ती मान्यता मिलती है। इसलिए अंत में यह कहना उचित होगा कि खेल बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग है। खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। इसलिए माता पिता, शिक्षक और समाज को बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वास्तव में खेलेंगे बच्चे तो खिलेंगे, और खिलेंगे बच्चे तो देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। साथियों, कार्यक्रम झरुखा में अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम बाजे मांदर में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं रेखा देवी जलछत्री के गाए हुए इस लोकगीत को।

0: मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम बाजी मांदर में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं दुखिया बाई भरतलाल और हरिंद्र केसवर में इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत को।

0: दुखिया भाई भरतलाल और हरिंद्र के गाए हुए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मादर अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद समाचारों का अनुप्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से, क्रमशः 8:00 और 8:15 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी 8:30 पर, विविध भारती कार्यक्रम 9:00, लोक संगीत 10:10 पर, 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। प्रादेशिक समाचार 9:55 पर और 11:55 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 11:00, 12:00 और 2:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट अनुप्रसारण होगा रायपुर केंद्र से आज दोपहर 2:00। शाम को 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम शाम गजल 5:10 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार 5:30 पर। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00 और 6:10 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। कृषक भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा फसल अवशेष को जलाए नहीं सड़ाकर खाद बनाएं, खेत बचाओ अभियान। सुनिएगा नसीहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए मासिक पेंशन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 9:00, 9:25 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर साइंस एंड टेक थीम पर विशेष कार्यक्रम। विविध संगीत रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 और दोपहर 12:30 DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 8:00 को है, थोड़ी देर में समाचार होंगे।
4: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार।

0: पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अपारा मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
7: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
3: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail.
9: Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
10: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Mishra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
9: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
11: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hai, hamari disha sahi hai. Ye safalta आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
9: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. He said the country has moved out of the fragile 5 category and has now become one of the fastest growing economies in the world. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the poor.
12: Over the past 12 years, the Narendra Modi government has implemented several flagship schemes for the welfare of the poor and to strengthen social security. Housing for the poor is the major focus area of the Modi government. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, more than 4 crore houses have been allocated to states for economically weaker families in rural areas. In the area of food security, the government is providing free food grains to over 81 crore beneficiaries across the country under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Talking to Akashwani News, Indramani Nayak of Kalahandi in Odisha said that the poor people are benefiting through this scheme.
13: My name is Indramani Nayak. I belong to Kamthana Panchayat in Bhavani Patna, Kalahandi. Under the Garib Kalyan Anna Yojana that Narendra Modi has started, our family consists of 5 members and we are receiving 5 kg of grains per person. Earlier we used to face a lot of hardships, but now we are all living in peace and happiness.
12: The world's largest public health care scheme, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, is providing health coverage of 5 lakh rupees to vulnerable families, while Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras are offering generic medicines at affordable rates. Around 10 crore 82 lakh beneficiaries have availed cashless treatment under the Ayushman Bharat scheme. Talking to Akashwani News, Faiz Ahmed of Paramula, Jammu and Kashmir, said that the Ayushman Bharat scheme is facilitating the poor to avail treatment during emergencies.
14: I am very grateful to the NDA government and Modi ji for launching so many schemes. For the first time in the country's history, a poor person has received direct benefits through digitalization. I would like to talk about Ayushman Bharat. What used to happen in the country earlier before Modi ji's government was that when someone fell ill, people either had to sell their land or some expensive household item to arrange money for operations and other treatment. But ever since Modi ji launched the Ayushman Bharat scheme, there is no longer the case across the country.
12: Over 10 crore 55 lakh women have been provided free LPG gas connections under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, freeing them from the health hazards of traditionally cooking fuels. Meanwhile, under the PM Swanidhi scheme, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed to street vendors so far. India's social protection coverage has risen sharply from 19% in 2015 to more than 64% in 2025, covering nearly 94 crore citizens under the government welfare schemes. Around 25 crore people have been lifted out of poverty, reflecting a significant shift towards inclusive growth and welfare-driven governance. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
15: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Indian Chamber of Commerce plans to facilitate investments worth 1 lakh crore rupees in West Bengal through its member companies, reflecting growing industry confidence in the state's economic potential and growth prospects. The proposal was discussed during a meeting in New Delhi between the Indian Chamber of Commerce delegation led by its president Brij Bhushan Agarwal and Union Minister Jitendra Singh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Bulgaria's Prime Minister Rumen Radev in Sofia yesterday. Dr. Jaishankar highlighted India's robust bilateral ties, recent opportunities created by the strengthening India-Bulgaria strategic partnership, and the imperative for closer bilateral cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile world. He will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta Talks. The US military launched another round of strikes on multiple targets in Iran yesterday, saying the attacks were in response to Iran's continued aggression as tensions escalated in West Asia despite efforts to revive negotiations to end the war. The second day of American strikes came hours after Iran launched attacks toward Bahrain, Kuwait and Jordan, which host US troops. Iranian media also reported explosions in Bandar Abbas, Sirik, Minab and Keshem Island in the south of the country. Prime Minister Narendra Modi has praised the performances of Indian sportspersons and urged the nation to set ambitious targets for the Olympics. Speaking at the NDA conclave in New Delhi, Mr. Modi highlighted the achievements of young athletes and the rapid growth of sports in India while stressing the need to aim higher on the global stage.
11: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, हमें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
9: The world's biggest football tournament 2026 FIFA World Cup begins today and will run through July 19th across the United States, Canada and Mexico. The tournament is the largest in World Cup history, featuring 48 teams compared with 32 teams in previous editions. In this edition, a record 104 matches will be played, including 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds. The final is scheduled for July 19th. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahi, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Rainfall conditions are also expected during the day over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, coastal Andhra Pradesh and Karnataka, Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Tamil Nadu and Northeast India. Thunderstorms are also likely to occur today over Bihar, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Odisha and Uttarakhand. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
16: Thank you, Shagun. All the dailies lead with PM Modi becoming the longest serving elected Prime Minister and congratulatory wishes pouring in from around the world for this historic milestone in the journeys of Indian democracy. Modi 12.0 One Vision Nation First. In a document titled Nation First, the core mantra issued to mark 12 years of the current government. The centre emphasised its vision of Rashtra Pratham and asserted that it is no longer just a sentiment but the lifeblood of India leads the pioneer. For the first time in its dealings with the Trump administration, India summoned a top US diplomat in New Delhi following an attack earlier in the day by American forces on a commercial ship off the coast of Oman, cites the Indian Express under the headline, Three Indians Missing After Attack, Delhi Summons US Diplomat. Army Chief General Upendra Dwivedi reviews operational readiness of troops, reports the Asian Age, announcing the first built-to-suit data center capacity in India for Meta, the Financial Express mentions. Reliance Meta deepened ties with AI data center deal. Pact highlights new infra model for AI build-out. The Times of India in its editorial piece title, Control Shift, AI is not destroying the job market but changing it. There will be jobs aplenty if you update your skills. In white collar circle, this is the best of times. And finally, human contribution to global warming highest ever in 2025, says an annual study called Indicators of Global Climate Change. The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
9: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
17: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी।

0: नमस्कार संगवारी हो, जय जोहार। आकाशवाणी रायगढ़ के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी में आप सबो जन के हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आप मन के रेडियो संगवारी बंशी। संगी हो, ये जीवन के भाग दौड़ में कभू हंसी के कभू जरूरत होते, कभू सलाह के तो कभू अपन मन के बात कहे बर कोनो सच्चा और अच्छा संगवारी के भैया हो। यही अपनापन लेके हमन हर सप्ताह आप मन के बीच में आथन, जी हाँ, आप मन के गोट बात और आप मन के पसंद के गीत बन जाते हैं कार्यक्रम के पहचान। भैया हो, आज के दौर सूचना और तकनीकी के है, फिर रिश्ता नाता के गर्माहट और संवाद के मिठास आज भी उतकेच जरूरी है जतका पहली रहीस। ओकर बर भैया हो फटाफट अपन फोन उठावा और हमला मिलावो, फोन जुड़ जावा सीधा हमार खास छत्तीसगढ़ी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी माँ। हेलो संगवारी, हाँ कौन बोला था जी, कहाँ ले बोला था?
1: हाँ जय सिया राम भैया।
0: जय सिया राम जी, बतावा नाम बतावा।
1: पवन कुमार सेन बोला था भैया, घंटी पंडरिया ले।
0: पवन कुमार सेन जी,
1: आप मन कौन बोला था भैया?
0: मैं आपके रेडियो संगवारी बंसी बोला था, गंडई पंडरिया।
1: हाँ भैया, गंडई पंडरिया बोला।
0: हाँ हाँ हाँ, तो सेन जी आपका हाल चाल है, काबूता काम चला थे?
1: हाल चाल तो एक नंबर है भैया, हमारा टहार हमो मन बढ़िया, एक नंबर हमान और हमार मिस्त्री काम धीरे धीरे चला भैया, मकान मिस्त्री काम करते हूँ यहाँ।
0: अच्छा,
1: और रेडियो दिन भर अपन कान में दबाए रहे सुनत रहे भैया मोबाइल में।
0: बहुत बढ़िया, तो अच्छा है रेडियो हर एक तो आजकल संगवारी बन गए है कह। जैसा घाम तो अभी तगड़ा करत है, खेती किसानी के बूता हर भी कुछ दिन बाद चालू हो जाही।
1: तो काय हमन 6 बजे लगाथन भैया, 6 बजे से 1 बजे तक काम ला।
0: अच्छा,
1: और मंजनी मंजन गरम अपन घर में आ घुसर जाथन।
0: अच्छा, तो आप जैसे मिस्त्री काम करते है, एकर बर कहीं से ट्रेनिंग ले है? सरकारी ट्रेनिंग?
1: सरकारी नहीं ले भैया, हमारे पुराना एक ठेकेदारी से, ओकर द्वारा कम से कम हमारे गंडी पंडरिया में 30-35 जन मिस्त्री बने।
0: अच्छा, 30-35 जन ला अपन अंडर में काम करवाई से बढ़िया ट्रेनिंग दिए कहे तो।
1: कम से कम भैया महू 12-15 जन ला महू सिखाओ।
0: बहुत अच्छा, तो चला ठीक है, आप तो बढ़िया बूता करत है। आओ,
1: अब का हमारे बाग बहरा भदरसी वाले पन्ना लाल सेन भैया के खास फरमाइश जुड़े है, कुलेश्वर ताम रकार के गीत अगर हुई तो सुनवा दो भैया।
0: तो चला आपके जो फरमाइश है वाला हमन पूरा करे के कोशिश करबो, और जरूर आप इसने फोन करत रही, और आप मन अभी बढ़िया से बातचीत करे, ओकर बर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: और आप मन लगी बंसी भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, संग में पूरा आकाशवाणी रायगढ़ परिवार, हमारे हमारे सेन परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो संगवारी,
1: हेलो संगवारी,
0: कहाँ से बोला था जी?
1: मैं मोहला कुर्सी पाल ले बोला था भैया, विष्णु राम यादव,
0: मोहला खुर्सी पाले। तो
1: विष्णु राम यादव।
0: यादव जी, हमारे हेलो संगवारी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और आप अभी का बूता काम कर रहा था?
1: बस ये अभी आषाढ़ गिरने वाला है, अभी खेती पाती के साफ सफाई चलत है भैया।
0: काटा खोटी के वो बूता लग रहा था उनका।
1: हाँ, गर्मी तो 5-10 बजे तक के हो जाते, फिर ज्यादा लग जाते
0: हाँ हाँ हाँ
1: 4 बजे।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ तो आप आज के का पसंद है आप बतावा। हेलो हेलो हेलो संगवारी,
1: योगेश जांगड़े मेला सर सिरवा बांध से घूमे तरह से जी,
0: योगेश जांगड़े गांव के नाम लो एक बार और बताहा।
1: सिरवा बांधा घूमे तरह से।
0: तो जांगड़े जी, का का बूता काम चलत है अभी?
1: अभी तो बस यही कर रहे हैं, खेती बाड़ी की तैयारी है अगला फसल खातिर। में
0: अच्छा, खेती बाड़ी की तैयारी है। कतक में खेती किसानी करता के एकड़ है आपकी जमीन?
1: 10 एकड़ है भैया,
0: बहुत अच्छा। तो सब में धाने के लगा था कि और कुछ खेती किसानी करता
1: और
0: है?
1: साग थोड़ा है वगैरह खलो डाल देते हैं भैया घर में खाए बर।
0: बढ़िया। और साग सब्जी?
1: और सब्जी और बाड़ी हमें भैया छोटे से वही में डालता हूँ।
0: हाँ। तो खेती किसानी के अलावा और कुछ बूता काम करता?
1: नहीं और दूसरा काम नहीं है भैया, और पर्याप्त समय वही में लगते हैं।
0: हाँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपके गांव में और का विशेष है, का विशेषता है गांव के आपके
1: सब
0: सिरवा?
1: खेती बाड़ी मूल रूप से करते हैं भैया, वो छोटे से गांव है 1000 के आसपास जनसंख्या है।
0: अच्छा, तो ग्राम पंचायत है कि कहीं कोई दूसर गांव के
1: हाँ
0: आस?
1: हमारे ग्राम पंचायत हमें
0: ग्राम पंचायत है ना।
1: जी
0: केठी वार्ड है आपके गांव गांव में?
1: 10 वार्ड है भैया, छोटे छोटे हैं, अभी 5 साल पहले अलग हुए थे स्वतंत्र पंचायत,
0: हाँ। बहुत अच्छा।
1: और स्वतंत्र पंचायत के प्रथम सरपंच बने के भी सौभाग्य मुझे चलिए।
0: आपला? हाँ, तो एकर बार आपला बहुत बहुत बधाई है। प्रथम पंचायत के आप सरपंच भी बने रह, तो गांव के प्रतिनिधित्व तो भी आप करा था कहा तो।
1: जी करे रहे भैया, अब समय निकल गया।
0: हाँ नहीं, ठीक है। वो तो भाई एक समय रहते, 5 साल के लिए रहते, लेकिन 5 साल में आदमी चाहते तो बहुत कुछ कर लेते। तो आज के आपके का पसंद है बतावा।
1: लक्ष्मण मस्तूरिया जी का आवाज में कोई भी बढ़िया गीत सुनने वाले हैं।
0: लक्ष्मण मस्तूरिया के ना, चलो ठीक है। जांगड़े जी, आप अपन पसंद के गीत ला सुनाओ, गुनगुनाओ। ये आप फोन करो, ओकर बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो संगवारी।
1: हेलो।
0: हाँ संगवारी, कहाँ से बोला था जी?
1: मैं नाथघाट से मोतीलाल साहू भैया।
0: मोतीलाल साहू। आओ, का हाल चाल है साहू जी?
1: बढ़िया बढ़िया भैया।
0: बढ़िया एकदम, चकाचक।
1: ज्यादा है कि
0: गर्मी ज्यादा है?
1: तीन चार लोगों को भी फिर कभी तो पानी वाली गिरा थी तब ठीक नहीं थे।
0: अच्छा,
1: ज्यादा लोगों को पानी वाली बदली भी जाते लेकिन पानी नहीं गिरा थे।
0: पानी नहीं गिरा थे ना?
1: आने वाले मानसून के इंतजार है भैया।
0: हाँ हाँ हाँ, तो आप भी खेती किसानी की बूता करता?
1: मैं एक बाजार करता हूँ भैया, खेती भी है।
0: अच्छा, बाजार करता।
1: मिर्ची
0: बेचता?
1: मिर्ची, धनिया, अदरक, नींबू।
0: अच्छा, मिर्ची, धनिया, अदरक, नींबू। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये सब हर घर में हो जाते कि आप नपा के बेचते? अच्छा, तो कहाँ है आपके नानघाट में कौन मंडी है? अच्छा, भाटापारा मंडी। ये तो बहुत बड़े मंडी है बताते हैं। अच्छा, तो वहाँ कतक कन व्यापारी आत हो?
1: सारा व्यापारी लगभग 15-16 ही पर नया मंडी बने हैं।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ,
1: तो व्यापारी आते भी अपन उसी सीजन आए के आते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ सस्ता मिलते
1: हैं? बाहर बाहर से बड़े बड़े गाड़ी लगते हैं, तो अपन रात्रि भी बार लोडिंग होती है, बाहर बाहर जाए
0: पर। अच्छा, तो सब्जी वहाँ से बाहर भी जाते कहा तो?
1: बाहर वाले गाड़ी आते हैं, बड़े बड़े गाड़ी लगते तो।
0: अच्छा, बेचते सब्जी कहा तो बहुत अच्छा काम है आपके भाई, इसने आप करा अपन परिवार लग बढ़िया भरण पोषण करा। आपके आपके कहाँ फरमाइश है आज? बकरी के तुमानार। तो चला साहू जी, आप आपके जो फरमाइश है बहुत अच्छा फरमाइश है, और एक गीत ला हम सुनवा था ना, आपके फरमाइश ला पूरा करा था ना। हेलो संगवारी में फोन कर, आप ला बहुत बहुत धन्यवाद है।

0: हेलो संगवारी।
1: हेलो संगवारी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन बोला था भैया?
1: मैं लोरमी धौरा भाटा तीज राम ध्रुव बोल रहा
0: हूँ। लोरमी धौरा भाटा,
1: मुंगेली जिला तीज राम ध्रुव।
0: तो ध्रुव जी, आओ हेलो संगवारी में फोन करे पर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है, आओ स्वागत घला है।
1: धन्यवाद सर जी, स्वागत।
0: तो
1: आपको मन धन्यवाद।
0: का फरमाइश है, आज का सुनना चाहता था आप?
1: साध राम मरावी के हम परसा कस फूल हो गए संगी।
0: साध राम मरावी के
1: हम परसा कस फूल हो गए संगी।
0: अच्छा, तो चलो सुनाओ आप अपन पसंद के गीत, आओ संगे संग मुस्कुरावा गुनगुनावा, फोन करा होकर बराबला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक।

0: हेलो संगवारी,
1: हेलो संगवारी।
0: कहाँ से बोला था जी? क्या नाम है आपके?
1: झूलेलाल कॉलोनी से बोला था। हाँ,
0: झूलेलाल कॉलोनी से।
1: लक्ष्मण वाधवानी,
0: लक्ष्मण
1: श्रीमती विमला वाधवानी और हवन की और बहू है श्रीमती दिशा वाधवानी और नाती है हर्ष और खुशी वाधवानी।
0: तो हमार हेलो संगवारी में फोन करे पर आपके पूरा परिवार ला पूरा परिवार के स्वागत है। आवाज आपकी का फरमाइश है?
1: बड़े दिन के बाद रखेगा,
0: बड़े दिन के बाद लगे है।
1: हाँ, कोशिश बस कर कर के चला जाता नींद।
0: अरे
1: सुने हल्ला कमान करते नाम सुन सुन बहुत खुशी होती है।
0: तो बधाई हो भैया, फोन लग गया आपके। चलो नाम बतावा, गाना बतावा।
1: हाँ, दो चार मितान के नाम ले बोगा।
0: हाँ, लेवा लेवा लेवा।
1: हाँ, राजशंकर जी है।
0: हाँ
1: चेतन।
0: हाँ हाँ
1: दुर्गा दुर्गा चौक से।
0: हाँ
1: श्रीवास चौक से, जगदन नगर चौक से घड़ी वाला है विकास।
0: ये सब आप मन के रेडियो श्रोता साथी है कहा तो? तो आप सबके श्रोता साथी ला भी धन्यवाद है। चला आप फरमाइश बता, गीत बताओ आपका सुना।
1: फरमाइश है, मेला में घूमे नहीं जाता क्या? कोई मेला में बैला गाड़ी में घूमे जाता? उसने चाहे के गाना है, बैला गाड़ी में घूमे जाबो,
0: बैला गाड़ी में घूमे जाबो। तो
1: एकर खुशी होएगा।
0: एकर कलाकार कौन है, जाना था?
1: कलाकार बुला देंगे।
0: हाँ चला ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ हेलो संगवारी में फोन करे एकर बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद है। और चला सुनो आपके फरमाइश के गीत और संग में गुनगुनाओ।
1: बहुत खुशी होती है आपका वैसे सुनी आवाज है।

ही गुरदूर छत्तीसगढ़ी गीत के संग अब बेरा हो गए हैं हमारे खास कार्यक्रम हेलो संगवारी से विदा लेके। आज के कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग रहिस बीएस ध्रुवे के, प्रस्तुतकर्ता रहिन रवि आनंद और प्रस्तुति सहयोग रहिस राम विलास पटेल के। तो अपन रेडियो संगवारी बंशील देव विदा, फिर मिलबो अगले सप्ताह ही बेरा, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 9 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

हजारा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संजीव कोहली का संगीत।

पॉन की आवाज में मेट्रो इन दिनों फिल्म से ये गाना, संदीप श्रीवास्तव के बोल, म्यूजिक है प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अनवर फिल्म से, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में सईद कादरी के बोल, म्यूजिक है मिथुन का।

0: अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौर पर, तो जानिए इनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से इस कार्यक्रम के बाद, यानी 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30 पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आया।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुनाया करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

तेज पहला परफॉर्मेंस एक ग्वालियर टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह रखा
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ

चीजें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, खास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एक लव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ, तो ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

जमाना। लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: कार्यक्रम
1: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 9 मिनट हुए हैं, थोड़ी देर में रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: 55 मिनट होने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष जनजाति समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्ण काल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या पर निर्णायक नियंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसरों का तेजी से विस्तार

0: हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों और प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह पुनर्संरचना शैक्षणिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए की गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले दो दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहुंच सकता है। इस बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 10:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का वक्त होगा 10:30। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा 11 बजे से 11:55 तक, 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक और 2:15 से शाम 5 बजे तक। आज दोपहर 2 बजे हम आपको सुनाएंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट। शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम शामे गजल हम आपको सुनाएंगे 5:10 पर। 5:30 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर द्वार। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6 बजे और 6:10 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:20 पर शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। कृषक भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी का वक्त होगा संध्या 7:20। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा फसल अवशेष को जलाएं नहीं, सड़ाकर खाद बनाएं, खेत बचाओ अभियान। सुनेगा नसीहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए मासिक पेंशन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 9 बजे 9:25 पर सुनेगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर साइंस एंड टेक थीम विषय पर विशेष कार्यक्रम।

सूचना के अनुसार 16 जनवरी 2026 को दोपहर 1:43 पर अज्ञात पुरुष पेट्रोल पंप टीवी टावर रोड में बेहोश पड़ा था। डायल 108 वाहन के द्वारा मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में लाकर भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 17 जनवरी 2026 को शाम 7:08 पर उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का हुलिया, बाल का रंग काला, काली मूछ, गले में बाजारू चेन, सफ़ेद नीला धारीदार रंग का अस्पताली कपड़ा है। अज्ञात मृतक के वारिसानों का अब तक पता नहीं चल सका है। यदि इस हुलिये से मिलते किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो कृपया थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में इसकी सूचना दें। मृतक व्यक्ति से संबंधित सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye

0: ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखे तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। 22 को की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली,
6: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
7: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं चतुर साहू और कांति यादव के गाए हुए इस लोक गीत को।

कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं चतुर साहू और कांति यादव।

0: 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। आज के कलाकार हैं चतुर साहू और कांति यादव।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं चतुर साहू और कांति यादव के स्वर में इस लोकगीत को।

चतुर साहू और कांति यादव के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपके रेडियो दोस्त कृष्ण कुमार साहब का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में अपने पत्रों और ईमेल्स पर आधारित अपने पसंद के नगमे सुनेंगे मेरे साथ। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत से। इस गीत को हमने लिया है फिल्म रोटी से। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई देवांगन। गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। इसी गीत को सुनने के लिए दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा। इसी गीत को सुनने के लिए पत्र लिखा है मिट्ठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, बिहारी पटेल, लक्ष्मी बरेट, अजय महापात्रे और गेंदू भाई। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म रोटी का ये गीत।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: अभिमान, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। मजरू की शब्द रचना है संगीत सचिन देव बर्मन का। गीत सुनने की फरमाइश लिख भेजी है नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण बाधवानी, बिमला बाधवानी, मास्टर हर्ष, खुशी और शुभम।

वाणी। श्रृंगेरी सी महानदी सिहावा पर्वत गांव से पत्र आए मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन का। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष और आशित चौहान। ईमेल किया है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। पत्र आया है ईमेल आया है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र, रौनक सेन। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्री 420, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में। गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है पद्मा टाकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, बंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोड़। गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मैंक रेडियो श्रोता संघ नामागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, इंदिरानगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश देवांगन, राजू देवांगन, बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जानवी, तृप्तेश देवांगन, रावर्सन दर्रामुड़ा से लंबोदर प्रसाद पटेल, फलेंद्र कुमार, तेजराम, सुरेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, पीयूष, कृष्ण, रामख्याल, तुलाराम, रूप बसंत, मानस, हरिशंकर, आरीन, देवा और श्रीधर पटेल। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

धर्महात्मा। इस फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन बानो मोहम्मद अलीम आसिफ नईम राजा विनोद कुमार गुप्ता रीना नेहा ईशु अंशु गुप्ता रायकारी श्रीमती मीनाकारी पुंजराज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जय पिंकी रिंकी रिक्की नीतू मोहम्मद फारूक ललन मिश्रा ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से परत्राया है हरदीप जैतिक बीरक मीका बीरक का छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक झावेंद्र कुमार वर्मा महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज ठाकुर सुजला ज्योति रेयांश ठाकुर कैदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह उषा सिंह प्रियंका पूजा लीलू रितु और ऋषभ सिंह। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति रितेश राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान और आशिक चौहान ने। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

सौतन कार्यक्रम के अंत में आइए हम आपको सुनवा रहे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में सावन कुमार और प्रदीप कौशिक की रचना को संगीत है उषा खन्ना का गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है अंडार नाथघाट से माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी वर्मा छत्रपति संभाजी नगर से ईमेल आया है राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश इसी गीत के लिए दतरंगी से ईमेल किया है भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती मिनीता वर्मा रुद्र वर्मा नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस महाकर निर्मला महाकर विशाल महाकर मलकापुर से नारायण इंगले राजकुमार खर्चे आशीष मुरहेकर आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल मोरज जंगेल अनिल कुमार अजीत आयुष नंदनी धमदाह ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल शकुन जंगेल आरुषि ओशिका आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल ग्राम खट्टी जिला महासमुंद से टिकेश्वर साहू कीर्तन साहू शिवाय साहू हंसिका साहू आर्यनगर लक्सर हरिद्वार से पत्र आया है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां का आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

ऐसे साथी जो कार्यक्रम हमारा पहली बार सुन रहे हैं या वे साथी जिन्हें अपने पसंद के नगमे सुनने हैं तो हमें ईमेल करें या पत्र लिखें। हमारा ईमेल एड्रेस है srotarayagad@gmail.com और पत्र व्यवहार का पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी रायगढ़ पिन कोड है 4960001। तो दीजिए इजाजत कार्यक्रम से अपने रेडियो साथी कृष्ण कुमार साहू को और सुनते रहिए प्यारा सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे आपके ईमेल्स और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राज्य व क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने UNDP को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। नकली सोने के बिस्किट

0: को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन में दबा खजाना मिलने की कहानी सुनाकर नकली सोने के बिस्किट और सिक्के असली बताकर सस्ते दाम में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, 1 नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन संभागों के कुछ जिलों में तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। केशकाल घाट के 7वें मोड़ पर एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण केशकाल घाट पर मेगा जाम लग गया है। घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवागमन प्रभावित हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेलवे स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और
4: योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल

0: सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: का सर्वदिखिया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर का गाया, राजा और रंग फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

मर्यादा फिल्म का दो गाना आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओ यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

संगीत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों, उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं इस कार्यक्रम में, अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai, और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया। कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ। याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं। एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते, कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं। एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए, और मन

श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारिने नज़र आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आज़ादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ चपाकचई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद्व को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओ, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें ज़रूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज़ गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप ज़रूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ ख़ास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद की चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज़ या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गाँव में जो यादें हैं, रहट का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और रिश्रोता ने लिखा है, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताज़ी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाज़ें अब भी दुनिया में नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रख कर कह रही हूँ अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफ़ी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पगडंडी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से। और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भूर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है। मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है। गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती हैं कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं इस इबारत में, गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरी बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस्तक, यादें, भोर, पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव। जी हाँ, और गीत भी बताए। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओ। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है, आपके गांव की, रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओ। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफ़र किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा, गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है।

हमारी आज की इबारत हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं, तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफ़र का इंतज़ार है। तो जी हाँ, ये सफ़र जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये ज़रूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताज़ा हो गईं और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियाँ, वो आंगन में सब कुछ समेटना और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भय पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीज़ें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है?

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मज़ा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफ़र है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए, आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन, हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने रुला दिया वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ, उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे, जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है कि

जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था। आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़ कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: पेट हकिया बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवेगा लिख।

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओं, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे, बड़े खुशनुमा दिन थे। यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं और कलाकार।

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक। और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदूद जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव ज़रूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफ़र सम्पन्न होता है।

0: साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल।
1: ये सिर्फ ब्रांडिंग और मानकीकरण जो है ना, वो बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसी चुनौती को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा खुद का एक ब्रांड छत्तीस कला लाया गया।
2: और छत्तीस कला ब्रांड छत्तीसगढ़ के नारी मन के सृजन के चिन्हारी आवे। कोसा सिल्क के ताना बाना ले लेके बाजार में मांग के अनुसार सब सामान के उत्पादन भर लगे स्व सहायता समूह के लाखों दीदी मन के आत्मनिर्भरता के निशानी आवे,
1: जिसे एक नाम देकर 19 नवंबर 2025 को छत्तीस कला ब्रांड का शुभारंभ माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया था।
2: हो दीदी हो, छत्तीस कला ब्रांड के शुभारंभ हमर बर गर्व और तरक्की के आधार आवे।

0: सुरुज दीदी, छत्तीस कला एक नाम से कहीं बढ़कर एक समान गुणवत्ता, भरोसेमंद बाजार, हर एक ग्रामीण शिल्पकार दीदियों के लिए एक स्थायी आजीविका का वादा है। वर्तमान में छत्तीस कला ब्रांड के अंतर्गत उत्पादों की बिक्री विभिन्न माध्यमों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन बाजार, ट्रेंडिंग चैनलों एवं गिफ्टिंग सेगमेंट के माध्यम से सफलतापूर्वक की जा रही है।
1: और जाना था चंदा
0: का दीदी,
1: बिहान के अंतर्गत दीदी मन, महिला उद्यमी मन

0: और मार्केटिंग में पीडब्ल्यूसी संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग भी दिया जाता है।
1: बस्तर के ग्रोथ सेंटर में हरदी, मिर्चा, धनिया, तिखुर, अमली के रोटी, बेल मेटल, मिलेट कुकीज असन गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करे जावत हवे।
0: ऐसे ही सरगुजा के ग्रोथ सेंटर में सरसों के तेल, जीरा फूल चावल, विष्णुभोग चावल, मोरिंगा पाउडर, शहद, कोसा उत्पाद जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जा रही है। वर्तमान में 16 उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग 36 कला के अंतर्गत की जा रही है। सुरुज दीदी, जल्दी ही निकट भविष्य में 25 उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग 36 कला के अंतर्गत होने लगेगी। तो आइए दीदियों, समृद्धि सरगुजा संकुल संगठन अंबिकापुर के अंतर्गत उजाला स्व सहायता समूह ग्राम श्रीगढ़ की कोषाध्यक्ष श्रीमती हेमंती रजवाड़े से जानते हैं कि वो कैसे ग्रोथ सेंटर का संचालन कर रही है।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
2: दीदी तो अपन बारे में बताते।
3: दीदी पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, समूह के जुड़ने के बाद एक रोजगार मिला, फिर हम लोग का जो काम करते थे जैसे सरसों तेल, जीरा फूल चावल, मोरिंगा पत्ती का, तो उसमें अच्छा से प्रॉफिट भी नहीं होता था, मार्केट भी नहीं पाते थे हम लोग। रोज सेंटर में सरसों तेल हो गया, मोरिंगा पाउडर हो गया, जीरा फूल चावल हो गया, विष्णु भोग चावल हो गया, उसको लाते हैं हम लोग, उसके बाद उसको छटाई वटाई बिनाई करके उसका प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसमें पैकेजिंग करते, जिसमें कि हम लोग का 36 कला ब्रांड है, जिसमें उसका जीएसटी बिल है, एफएसएआई लाइसेंस है, लैब टेस्ट हुआ है, जिसमें उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको पैकेट में बेचते हैं हम लोग 36 कला ब्रांड में, तो कर पैसा ज्यादा मिलते। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसमें भी हम लोग का प्रोडक्ट आ गया है। 36 कला ब्रांड हो गया ना, एक लेबल हो गया, पैकेजिंग हो गया, स्टैंडर्ड लेबल का होता है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ग्रोथ सेंटर में भी काम दिया जाता है दीदी, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। बिहार में जुड़े के बाद बहुत आगे निकल गई हूँ, सरस मेला था अभी भोपाल में, रायसेन में, वहाँ जाने का मौका मिला, मंत्री लोग से भी मिलने का मौका मिला, यहाँ रायपुर भी आने का मौका मिला, मतलब ये मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। स्कूटी खरीद ली हूँ बैटरी वाला, जिसे कि मैं अपने घर का जरूरत को पूरा कर पाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं उसको भी पढ़ा पा रही हूँ, अच्छे स्कूल में दे पा रही हूँ, तो मेरे समूह के दीदी लोग भी लखपति दीदी बन गए हैं। ये सब बिहार का ही देन है दीदी, और लखपति दीदी बने इसलिए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
0: वाह दीदी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। पता है सुरुज दीदी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत एकल ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत 36 कला ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीयन कराया गया है।
2: हो गई।
0: और ऐसे में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों के लिए अधोसंरचना विकास, बाजार तक पहुंच और उपयोग, ब्रांडिंग, पहचान और तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय सहयोग उपलब्ध कराना संभव हो रहा है। तो आइए हमारी दीदी श्रीमती सुनीता ग्राम चिलकुटी जिला बस्तर से मिलते हैं।
4: जय बिहान दीदी।
5: जय जय बिहान दीदी। मैं अभी जीवन ज्योति महिला क्लस्टर की सचिव हूँ और ग्रोथ सेंटर अभी संचालन कर रही हूँ।
0: अच्छा, तो ग्रोथ सेंटर में आप क्या काम करती हैं?
5: ग्रोथ सेंटर में जैसे मैम हम लोग का अभी 36 कला ब्रांड अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस रस में अभी दिख रहा है, तो जैसे बाहर से भी कोई कोई ऑर्डर करते हैं, तो उनके लिए उनका ऑर्डर आता है ना, तो मेरे ही मोबाइल में ओटीपी आता है। हम ओटीपी को एक वेबसाइट है उसमें जाके ओटीपी नंबर यानी कि वहाँ पे डालते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे दिखाता है कि आपका ये ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आया है, फिर उसके बाद उस हिसाब से हम लोग ना फिर उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद डिलीवर बॉय आता है और उसको फिर डिलीवरी कर देते हैं।
0: पहले आप बिहान से जुड़े थे तो आप क्या काम करते थे, और अब ग्रोथ सेंटर में काम करने के बाद आपको कैसा लगता है?
5: मैम पहले बिहान में जुड़ी थी तो खाली समूह में ही थी मैं, और जैसे मैं क्लस्टर में जुड़ी हूँ, क्लस्टर में जुड़ने के बाद ही ग्रोथ सेंटर में जुड़ी हूँ। और अभी ग्रोथ सेंटर के माध्यम से यानी कि अच्छा अच्छा चीजें जानने को मिल रहा है। मैं कभी रायपुर नहीं आई थी, मैं फर्स्ट कवाई बोलने से यहाँ सरस मेला वहाँ पे आई थी, हम लोगों का बायसलर मीट हुआ उसमें आई थी, तब मैं रायपुर आई थी।
0: अच्छा।
5: आपको और एक बात बता रही हूँ, जैसे समूह की दीदियाँ बना रहे थे सामान, वो सामान का ना उचित दाम नहीं मिल रहा था और ना ही पैकेजिंग ठीक थी और उनका पसा ही नहीं था और लाइसेंस भी नहीं था। अभी जैसे हम ग्रोथ सेंटर में समूह की दीदी अमन देना स्टार्ट किया है तो उनका पैकेजिंग अच्छा हो रहा है, उनका ब्रांडिंग भी अच्छा से कर रहे हैं और दाम भी अच्छे ही मिल रहा है उनको। और एक बात कहना चाहती हूँ, छत्तीस कला ब्रांड को ना 40 सुपर मार्केट

0: में अभी हम लोग लगाए हैं। अभी हम लोग ना करीबन बस्तर में 4 लाख तक का बिक्री कर चुके हैं और सरगुजा में 2.5 लाख तक बिक्री कर चुके हैं।
1: तो सबके जीवन में क्या बदलाव आया है और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो?
0: मैम, बदलाव तो बहुत आया है। मैं ही देख लो, मैं पहले घर पे ही रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी जैसे मैं समूह में जुड़ी, क्लस्टर में जुड़ी, उसके बाद फिर ग्रोथ सेंटर में जुड़ी, अभी मैं कहीं भी जा रही हूँ। वैसे ही समूह की दीदियाँ जो अभी समूह में जुड़े हैं, जो भी उत्पाद कर रहे हैं वो हम लोग के ग्रोथ सेंटर में दे रहे हैं, तो उनको अच्छा दाम भी मिल रहा है और उनका आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सुधर रहा है
1: और
0: आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दीदियों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जो भी सामान बना रहे हैं, मैं दीदियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने उत्पाद ग्रोथ सेंटर के माध्यम से ही बेचें, जिससे आपको अच्छा दाम मिलेगा और आपके उत्पाद को छत्तीसकला ब्रांड के नाम पर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी।
2: सुनत है चंदा, स्व सहायता समूह के दीदी मन छत्तीसकला ब्रांड ले जुड़ के आर्थिक रूप ले सशक्त बनत हावे।
1: और इसी कड़ी में दोनों ग्रोथ सेंटर ने अमेजोन के साथ MOU भी किया है। SHG उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, रिलायंस मार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में विक्रय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुबंध किया गया है। ऐसे में वे कैसे ग्रोथ सेंटर से जुड़कर अपने उत्पाद को आसानी से बेच पा रहे हैं, आइए जानते हैं। आप हैं श्रीमती डालिम बघेल और श्रीमती रुद बघेल दीदी, जिला बस्तर से।
3: जय बिहान दीदी।
4: जय जय बिहान दीदी।
1: डालिम बघेल दीदी, आप क्या काम करती हैं?
5: हम टीकुर उत्पाद करते हैं।
1: ग्रोथ सेंटर से आप कैसे जुड़ी और उसके बाद आपका क्या अनुभव रहा?
5: पहले ना हम लोग बाजार में ले जाते थे, कभी ऑटो मिलता था, कभी नहीं मिलता था। जैसे बाजार में कभी कम दाम में बेचते थे और कभी इनकम होता था, कभी नहीं होता था। जब हम लोग को ना ग्रोथ सेंटर खुला है बोल के दीदी लोग से पता चला, तभी हम लोग ना ग्रोथ सेंटर में दीदी लोग को दिए, तभी ग्रोथ सेंटर से हम लोग को दुगना फायदा हुआ। मार्केट में है ना 500-600 किलो में बेचते थे और जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े तभी हम लोग 1 किलो 1000 में बेचने शुरू किए और घर बैठे ग्रोथ सेंटर से हम लोग माल देने शुरू किए।
2: रूप बघेल दीदी, आप जिससे हल्दी के उत्पादन लेते हो, तो ये ग्रोथ सेंटर और छत्तीसकला ब्रांड से आप कैसे जुड़े हो?
6: हमारे ग्राम पंचायत के आम सभा बैठक में दीदी लोग बताए कि ग्रोथ सेंटर में कच्चा माल लिया जाता है। आप अपने घर मतलब घर में हल्दी का उत्पादक करते हैं तो कच्चा माल आप हमें बेच सकते हैं। पहले हम लोग को मार्केट में जाके बेचना पड़ता था, लेकिन जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े हैं तो उसमें हमको फायदा होती है और उसमें ये भी सुविधाएं हैं कि दीदी लोग घर में आके हमारे कच्चा माल लेके जाते हैं, उनको बाहर वाले को देना नहीं पड़ रहा है। मेरे को सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि जिस ग्रोथ सेंटर में मैं अपना माल दे रही हूँ वो मेरे ही समूह के दीदियाँ हैं, मेरे ही ग्रोथ सेंटर के दीदियाँ हैं और मेरे छत्तीसकला ब्रांड के दीदियाँ हैं।
2: तो सुरता रखो दीदी हो, छत्तीसकला ब्रांड छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गुणवत्ता और स्थानीय उत्पाद मनला नवा पहचान भी देवत हवे।
1: बिल्कुल, ये विश्वास की बुनियाद है आपका अपना रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट। इसमें हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
2: ये टोल फ्री नंबर में सवाल पूछे हैं महामाया स्व सहायता समूह सांकरा ले भारती ध्रुव, जय संतोषी स्व सहायता समूह जरगांव ले मोहनी बाई साहू, एकता स्व सहायता समूह भैंसापारा ले दिनेश्वरी, जय संतोषी स्व सहायता समूह किरवई ले संतोषी, जय माँ वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह ले दुर्गेश्वरी साहू आप हैं भैंसापारा ले, प्रज्ञा स्व सहायता समूह समरिया ले लक्ष्मी, सरस्वती स्व सहायता समूह खनौदा ले मधु खरे, माता सुरका स्व सहायता समूह ले देवतीन बाई साहू आप हैं बोरी कारका ले, माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह सिरसा ले प्रणीता तिवारी और जय शीतला स्व सहायता समूह सुढ़ी ले तलेश साहू। और पूछे गए सवाल मन ले आज एक सवाल लॉटरी निकाल के चुने हैं, ये माँ लड्डू गोपाल स्व सहायता समूह सरस्वती समूह ग्राम पंचायत छिनौला ले पूछे हैं, रागी लड्डू बनाथन तो एकर मार्केटिंग कैसे करन और छत्तीसकला ब्रांड ले कैसे जुड़ सकथन?
1: रागी लड्डू की मार्केटिंग के लिए सर्वप्रथम लड्डू निर्माण के समय SOP का पालन करें। उत्पादन की पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग छत्तीसकला ब्रांड के अंतर्गत करने के लिए बिहान कर्मचारियों से संपर्क करें और ग्रोथ सेंटर से जुड़कर लड्डू की मार्केटिंग कर सकते हैं।
2: तसुरता रखो दीदी हो, एक छोटे से गाँव के दीदी मन की कला मेहनत और पहचान ले लेके देश दुनिया तक ये यात्रा आवे महिला सशक्तिकरण के यात्रा।
1: और दीदी ये कहानी है रचनात्मकता, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की, पहचान है 36 कला ब्रांड की।
2: अब अपन पहचान ले सम्मान के रास्ता में बिहान संग कदम मिला के मिल के बढ़वो।
1: हाँ,
2: यही परन संग बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी मन के सफलता के गोठ लेके फिर मिलवो।
1: हो
2: तब तक बर देवो विदा, जय जोहार, जय बिहान।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ, ही आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सर
7: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
8: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
7: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
8: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
7: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
9: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
7: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
9: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
7: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
10: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट है। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फेयर्स और बढ़ रहे

0: दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़क।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षपत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: माँ मदरफी की आवाज में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओं यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत सब लेकर आए हैं। तो और देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: तो इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिलेक क्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब अगर कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहाँ की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानियों को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उसी तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियाँ बहुत बनती हैं, तो वहाँ लकड़ी की कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल। और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन

0: ते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती, और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ की लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमावा ने गाँव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गुम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी ज़रूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है,
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है, और उनके दर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गुम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गुम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन ले अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती थी ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता था।
1: बिल्कुल, और ये अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं। तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज़ और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला
0: वो बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेकर जाएँ, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज़्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है,
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीज़ें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जानें, पहचानें और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना ज़रूरी है, और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी खेलते थे, और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की एक गेंद बना ली, उससे मार कर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो

0: की वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है, और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उसे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
1: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना ज़रूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज़ में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
0: बिल्कुल सही बात है। और इस साल जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं जी, बहुत सी ऐसी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: है। और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं। बहुत
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस बिल्कुल हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता है कभी कभी।
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो चल रही गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में हम समझ नहीं पाते, साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही हूँ। वो सिर्फ दूसरों की नजर

0: दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज़ को उस पर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतज़ार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम अभी क्यों नहीं खुश हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: तो हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं,
1: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना, हमें अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर ज़िंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहाँ तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सब के साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर. हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना. जी
1: बिल्कुल. और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें. क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है. खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए. मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए.
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे.
1: बिल्कुल.
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है. जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं वहाँ पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फ़ोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं. और इस बेहतरीन दिखने की वहाँ पर होड़ सी मची हुई है. खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी

0: छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है,
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और जो मैच होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने की, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में. एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है. दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है. इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो.
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने. और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए. खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते. दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता. और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हमारे श्रोताओं, हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
0: बिल्कुल सही बात है. और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे. और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है.
1: बहुत जरूरी
0: है. और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं. कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है. इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है. और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीरी, जैसे अक्सर हाँ. हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही तो बस माचिस की तीरी लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक.
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं.
1: हाँ, हेयर पिन चाबी ले लेता है कोई, कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है. और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुँचाएगा.
0: देखो जिस तरह से आँखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आँखों में जो नमी है वो अपने आप आँख उसे निकाल कर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं. इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है. कई बार उसे ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं. तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें. जो चाबी नुकीली चीज़ें हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें.
1: आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए. वो सब चीज़ें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है. इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है. और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए. और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं. तो आप बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही.
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही. एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है.
1: सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए. और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए. आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिए, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा. और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए. कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज़ से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी ज़रूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज़ ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के लोग। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी, इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं, बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं,
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर, तो ज्यादातर चलता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी साथ हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है, वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी।
0: पसीना आता है।
1: जी।
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है ना, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, आंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: आंटी क्या होता है?
1: आंटी वगैरह खेलते है ना, आंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का, आपके गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी,
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे, फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूँ पिछड़ा याद मिला दे। और अब्बा,
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा, कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे, हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्र का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम, क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा, छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था।
0: हाँ,
1: पहले से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने।
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सपना

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी,
0: क्यों?
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम तो है खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बार्शी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश,
0: और
1: अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल नहीं का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसुंतर बोल रहे हैं। मैम
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करता हूँ, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम, इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए ऐसे चलता है।
0: अच्छा समय रहते घर पहुँच जाते हो।
1: जी मैम जी
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा ऐसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है।
0: और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बात जिब्बे हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है। हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर आसाम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है। आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे। आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना। आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और साई का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो साई का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है। काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा साई का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है। तो बताइए, चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती की सारी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी हम कर रहे थे। FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 73 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जिगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये सलिहा भाटा, भेलवाटार, सर्दूकला, सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडू पानी, कठमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, गया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। FM बैंड पर 5:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्याम एकेश्वर पेश करेंगे 5:10 पर। 5:30 पर सुनेंगे

0: सड़ाकर खाद बनाएं, खेत बचाओ अभियान। नसीहत में सुनेंगे छोटे और सीमांत किसानों के लिए मासिक पेंशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। गैर फिल्म गीत 8:20 पर सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर साइंस एंड टेक थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 9:25 पर। आपकी फरमाइश 10:30 पर सुनेंगे विविध संगीत होकर रात 10:00। श्रोताओं एक सूचना सुनिए, मृतक के वारिसानों के पता तलाश हेतु सूचना सुनिए। थाना चक्रधर नगर रायगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार 16/1/2026 को दोपहर 1:43 को अज्ञात पुरुष पेट्रोल पंप टीवी टावर रोड में बेहोश पड़ा था। डायल 108 वाहन के द्वारा मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में लाकर भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 17/1/2026 को शाम 7:08 पर उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का हुलिया, बाल का रंग काला, काली मूछ, गले में बाजारू चेन, सफेद नीला धारीदार रंग का अस्पताली कपड़ा है। अज्ञात मृतक के वारिसानों का अब तक पता नहीं चल सका है। यदि इस हुलिये से मिलते किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो कृपया थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में इसकी सूचना दें। मृतक व्यक्ति से संबंधित सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 और दोपहर 12:30 डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: संदेश पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। समय है गजलों के कार्यक्रम शामी गजल का। गुलाम अली के स्वर और संगीत निर्देशन में इस गजल को सुनिए, जिसे लिखा है कातिल शिफाई ने।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: संदेश से पहले आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में इस गजल को। इस गजल को लिखा था सुदर्शन फकीर ने, संगीत भूपेंद्र सिंह का था। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फैज अहमद फैज के लिखे गजल को, स्वर संगीत मेहदी हसन का है।

मेहदी हसन के गाइस गजल के साथ ही गजलों का कार्यक्रम शामी गजल अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज पर, 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार सुनैया जम्मो दाई बहनी दीदी लैका सियान संगी जहुरिया सब बुझल्ला रीना के राम राम। और बहनी हो आज के बैठकी में हमन का गुड बात लेके आए हन तेकर गुड चर्चा सबले पहली करबो। तब बहनी हो आज के बात में गुड करबो बाल श्रम देखें तो शिकायत करें विश्व बाल श्रम रोधी दिवस 12 जून के उपलक्ष्य में। बहनी हो चर्चा के विषय रही बुजुर्ग हमारे सम्माननीय उनसे दुर्व्यवहार हमारे लिए खतरनाक। योजना के विषय रही अपनी उद्यमिता को आर्थिक संबल का आधार मुद्रा योजना। स्वास्थ्य चर्चा में बहनी हो आज बदलते मौसम में रखें खान पान और सेहत का ध्यान। चर्चा के और विषय रही अंधकार विनाश और तबाही को

हटाना है और भारत को नशा मुक्त बनाना है। बहनी हो, ये तो गुड़ चर्चा हुई और संगे संग सुनबो सुघर लोक गीतला। तो बहनी हो, गुड़ चर्चा के विषय में हमन हाँ आगू बढ़बो। त 12 जून ला विश्व बाल श्रम रोधी दिवस के रूप में मनाया जाते, जेकर उद्देश्य लैका मन ला बाल श्रम से मुक्त करना हवे, ताकि वो मन तक शिक्षा और सुरक्षा और उकर मन के सुघर जो जीवन है ओ डहर मा सुघर अकन ले मन ला आगू लाना हवे। 14 साल से छोटे कोनो भी कम उम्र के लेका मन है तो मन ला कोनो भी असुरक्षित व्यवसाय या भारी काम में लगाना प्रतिबंधित हवे, और उमन ला कोनो भी प्रकार के खतरनाक उद्योग में भी 14 से 18 वर्ष तक के कोनो भी किशोर मन ला खतरनाक उद्योग में काम कराना भी जो है वो मना ही निषेध हवे, प्रतिबंधित हवे। बहनी हो, हमला अपन तरफ ले ये जागरूकता रखना है, और कहीं भी ऐसे अगर बाल श्रम दिखाते ता हमला कर तुरंत शिकायत करना है। यह बहनी हो, बाल श्रम जो है वह कानूनन अपराध हवे, और एकर बर ऐसे लेका मल्ला काम कराए अगर सिद्ध हुआ थे ता एकर बर 6 महीना से 2 वर्ष तक के जेल या फिर 20,000 से 50,000 तक के जुर्माना या फिर दोनों संग संग हो सकते हैं। बहनी हो, जो भी कोनो बाल श्रम के शिकायत कर सकते और देखा तो एकर बर जरूरी है कि हमन हाँ जागरूक रहन। ऐसे कोनो भी जगह अगर देखा थन कि बाल श्रम होते तो वो चाइल्ड लाइन में हमन हाँ जो मुफ्त है पूरा तरीका ले वहाँ फ़ोन कर सकथन 1098 में 1098 नंबर पे। ये नंबर में हमन फ़ोन कॉल करके शिकायत कर सकथन जो कि फ्री हवे। और संगे संग जिला श्रम विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं, और संगे संग पुलिस ला भी आपातकालीन नंबर जो है 112 नंबर ओमा भी हमन हाँ एकर सूचना दे सकते हैं। संगे संग जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल कल्याण समिति में शिकायत कर सकते हैं। तब नहीं हो, आज के लैका मन हाँ कल के देश के भविष्य हुई, तो अगर हमन अपन घर गांव शहर देश ला आगू बढ़ाना चाहतन तब पहली काम आज के ये लैका मन बर हमन ला उकर मन के सर्वांगीण विकास के काम करना होही। ओ मन ला अच्छा लालन पालन पोषण और शिक्षा के डहर दिखाना होही। सोच और समझ के विकास शिक्षा से ही बेहतर हो सकते। लैका मन के उचित खान पान पालन पोषण और शिक्षा बर हम सब ला आगू आना चाहिए। बहनी हो, और कितना बचपन हर गम से बिगाना होता है, ता यही बात माँ अमल करत हुए घर के जो भी लोग लैका मन हवे ओ मल्ला रोजी रोटी के चिंता ना दे के उखर मन के शिक्षा के अधिकार के रक्षा करना होही, और शिक्षा मनोरंजन पालन पोषण ला सुघर अकन ले मजबूत रखना होही, ताकि आज के ये लैका मन हाँ अपन अपन क्षेत्र में आगू बढ़ के अपना नाम भी रोशन करें और अपन देश के भी नाम ला आगू बढ़ावें। तो जरूर करके बहनी हो, आप मन सब ए प्रति स्वयं भी जागरूक रहा और दूसर मल्ला भी जागरूक करा। और बहनी हो, चर्चा के विषय बुजुर्ग हमारे सम्माननीय, उनसे दुर्व्यवहार हमारे लिए खतरनाक। तो बहनी हो, घर के बड़े बुजुर्ग मन हमारे घर के अमूल्य धरोहर हवे, और घर के बुजुर्ग मन हाँ परिवार पर वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि पेड़ के जड़ होते जो परिवार ला जीवित रखते। फले फूले और सबके पालन पोषण के सारा जिम्मेदारी अपन कांध में लेके अपन परिवार ला एक मुकाम तक पहुँचाते। बुढ़ापा जीवन के सांझ हवे, जब जैसे बहनी हो दिन भर कमा धमा के मन हाँ सांझ हो जाते तब अपन घर लौट के आते, तो वहाँ चाहते शांति सुकून। वैसे ही परिवार के पालन पोषण बहनी हो के जिम्मेदारी जो है वो खुशी से अपन जिम्मेदारी ला पूरा करत हुए जब ये शरीर हा थक जाते तब मन ला शांति और खुशी और आदर के चाह रही थे। बहनी हो, घर के बड़े बुजुर्ग मन जीवन में बहुत संघर्ष करत हुए कठिन परिश्रम से आगू बढ़े रही थे। उकर बर उमन के जो बहनी हो उकर मन करा अपन जीवन के अनुभव रिथे ज्ञान रिथे समझ होते जो हमला भी
सही दिशा दिखा सकते। तो हमन ला वो अनुभव के लाभ जरूर लेना चाहिए और जीवन में कठिनाई के सामना कैसे अपन समझ बूझ से करे के है, कैसे कठिनाई ला समस्या ला हल करे के जो सीख है वो हमन बुजुर्ग मन से सीख सकतन। आज आपके परिवार के जो विकास उन्नति हवे वो कहीं ना कहीं आपके बड़े बुजुर्ग मन के त्याग संघर्ष और आशीर्वाद के ही प्रतिफल हवे। ओखर मन के सलाह और आशीर्वाद हमारे जीवन ला सफल बनाए के डहर में अगवाते। घर के बड़े बुजुर्ग मन से हमन हा नैतिक मूल्य संस्कार और परंपरा हम तक ओकरे माध्यम से ही पहुँचते। हम सब ला बड़े बुजुर्ग मन के आदर सम्मान करना चाहिए ताकि हमन ला देख के हमार आगू अवैया लैका मन भी आदर सम्मान के गुण जो है वो आदत में शामिल हो जाए। जो आके चाह के बहनी हो वह खुद आप मन के ही काम आही। काबर की बहनी हो ये तो जीवन के अवस्था हवे जो कि आज ओखर है तो कल एखर है और परसों हमार आपके भी हुई। तब बुजुर्ग मन के आदर व्यवहार ओखर जरूरत मन के ध्यान रखना और सेहत के ध्यान रखना ओखर मन उमल्ला भावना के साथ आदर देना हमार कर्तव्य हवे। काबर कि आज हम जो भी हैं वह मन के बदौलत हवन। जो मन बुजुर्ग मन के सम्मान करते वो हमेशा उन्नति करते, ये बात ला हमेशा ध्यान रखे के हवे और ओखर सीख से ही हमन भी उन्नति पा सकथन। तब बहनी हो बहुत जरूरी है कि हमन हाँ जो करथन वही ला देख के लइका मन सीखते। तो अपन घर के बड़े बुजुर्ग मन के अगर हमन आज सम्मान करथन तो निश्चित ही वो आज के लइका मन है ला सीख के कल ओला अपन व्यवहार में लाही आदत में लाही और जब आप ला जरूरत पड़ी तो कोनो भी प्रकार के जीवन में कठिनाई नहीं हुई और आप मन ला भी वैसे ही प्रेम आदर सम्मान मिली। तो आप मन जरूर करके ये डहर ले सचेत रहा और अपन घर के बुजुर्ग मन ला सम्मान देवा और उनकर मन के आदर रखा। बहनी हो ये बहुत जरूरी है कि संस्कार जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलत रहे। बनी हो ये तो हो इस गोट बात गोट चर्चा हमन अवगवाबो कर पहले चला सुनिए लोकगीत ला।

बनी हो लोकगीत सुनिन जेकर गायक कलाकार रहिन हैं पवन चंद्राकर साथी। त बहनी हो योजना में आगू बढ़बो त योजना के गोट के विषय है आपकी उद्यमिता को आर्थिक संबल का आधार मुद्रा योजना। बहनी हो ये सुघर योजना की शुरुआत हो रही से 8 अप्रैल 2015 की। और बहनी हो आप कोनो भी उद्यम करना चाहता हो, आपके पास हुनर हावे, कौशल हावे, अनुभव भी हावे, लेकिन पैसा के कमी के कारण आप अपन उद्यम नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती रोजगार पर। तो यही समस्या ला दूर करे बर सरकार ह लानी से मुद्रा योजना, जेकर तहत आप मल्ला कोनो भी उद्यम शुरू करे बर और ओला आगू बढ़ाए बर आर्थिक सहयोग करते। सुघर बात ये है कि ये माँ कोनो भी प्रकार के गारंटी के जरूरत नहीं रहे और बिना गारंटी के ऋण दे के आप स्वरोजगार अपना सकता हो, ताकि कोनो भी छोटे मध्यम जो व्यापार है, कारीगर है, दुकानदार, स्वरोजगार ला आप मतलब जो भी करना चाहता ओला आगू बढ़ सकता हो और स्वरोजगार ला एकर माध्यम से बढ़ावा मिला थे। बहनी हो मुद्रा योजना के लोन हाँ 3 श्रेणी में दिए जाते, शिशु मुद्रा लोन जेमा 50,000 तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते, किशोर मुद्रा लोन जेमा 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जो ऋण है वो दिए जाते, और वैसे ही तीसरा श्रेणी है तरुण मुद्रा लोन के जो कि 5 लाख से 10 लाख तक के जो है वो ऋण जो है वो आपला उपलब्ध कराए जाते। ये योजना के लाभ कोनो भी छोटे व्यवसायी, स्वरोजगार से जुड़े मनसे मन, ग्रामीण शहरी कोनो भी छोटे उद्यमी मन हाँ जो है ये सुघर योजना के लाभ ले सकते हैं। एकर बर दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, पेन कार्ड और आप जो व्यवसाय करना चाहता था वो व्यवसाय के योजना और पिछला लेन देन जो आपके बैंक में जो चला थे वो कैसे हाब है उखर रिकॉर्ड, ये जो ऐसे आवश्यक जो दस्तावेज है ओला दे के आप मन आवेदन कर सकता हो। लाभार्थी ला मुद्रा कार्ड दिए जाते जेकर उपयोग जो है व्यापारिक खर्च पर किए जाते। आप मन नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर एक बारे में और ज़्यादा जानकारी कर सकता हो और सुघर मुद्रा योजना के माध्यम से लोन लेके आप मन अपन व्यवसाय ला शुरू कर सकता हो। और बहनी हो सुघर योजना के लाभ आप मन ला जरूर लेना चाहिए और स्वरोजगार पर आगू आना चाहिए। और एक से बहनी हो आप मन ला तो रोजगार मिल ही, संगे संग दूसर ला भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो स्वरोजगार के माध्यम से आप अपन आप ला जो है आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता हो। तो बहनी हो ये तो रही से मुद्रा योजना के बारे में कोट कर देवा। आओ चर्चा के विषय में आगू बढ़बो। त अंधकार, विनाश और तबाही को मिटाना है, भारत को नशा मुक्त बनाना है। बहनी हो नशा नरक के द्वार, नशा से खुद के शरीर ला तो तकलीफ, रोगराही के संभावना जो है वो बहुत बढ़ ही जाते, संगे संग परिवार ला भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी जो है उकर सामना करना पड़ते। नशा के जो बहनी हो ये तो एक बुरा आदत तो है ही, संगे संग परिवार, समाज और देश के विकास में भी बाधा हवे। नशा चाहे कोनो भी प्रकार के रहे, जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, खैनी, चरस, गांजा, शराब। और बहनी हो आजकल तो ई नशा भी सुनेल मिला थे, घंटों मोबाइल चलाना, ऑनलाइन गेम खेलना, ये लत हो गए है। तो ये सब जो है बहनी हो इकर से जो दैनिक क्रियाकलाप है वो प्रभावित होते, संगे संग व्यवहार में तनाव, चिड़चिड़ापन, चिंता, नींद की कमी, परिवार से दूरी जैसे दुष्प्रभाव दिखेला मिलते। ये सब प्रकार के नशा से दूर रहना है और स्वयं जागरूक रहना है और दूसरा भी जागरूक करना हवे। शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, ये कोनो भी प्रकार के नशा से जीवन के नाश ही होते बहनी हो, ये ला हमेशा सुरता राखे के ही संगी हो और एकर से दूर रहे माँ ही भलाई है। नशा न करे के प्रति स्वयं में संकल्प शक्ति होना बहुत जरूरी है। अपन सेहत ला सबसे पहली प्राथमिकता देना हो ही आप ला स्वयं बहनी हो, ऐसे दोस्ती यारी से बचें जो कि नशा के डहर में ले जाएं। अपन परिवार के प्रति अपन जिम्मेदारी ला आपला समझना हो ही।
मोबाइल इंटरनेट के उपयोग सीमित मात्रा में ही करें और परिवार और रिश्ते नाते मल्ला महत्व देवो उमल्ला समय देवो उमल्ला समझाओ। अपन समय जो है बहनी हो वो जरूरी है कि आप अपन समय ला अपन के लोग लेका छोटे होता पढ़ाई लिखाई खेल कूद या आने प्रकार के रचनात्मक कार्य में देवा उमा लगावा। आप ला जो भी पसंद है वो काम ला करा। अपन के खुद के अगर आप मन हा कुछ कौशल करना चाहता ओला सीखाओ और दूसरला भी सिखाओ ताकि आगु चले के आपके जो बहनी हो ये हुनर है कौशल है वो आपके काम आही आपके व्यक्तित्व के विकास होही और संगे संग आप ला आर्थिक लाभ भी मिली। संगी हो यारी दोस्ती हंसी मजाक शर्त से शुरू हो या ये नशा कब लत बन जाते पता नहीं चले और जब पता चलते तब तक देर ना हो जाए। ये बात आप ला स्वयं आप अपन प्रति जागरूक और सतर्क रहला पड़ी। सतर्क रहा और नशा से दूर रहो। जो नशा छोड़ना चाहे थे वो स्वयं प्रयास करें और स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिली। और एकर बर आप मन हाँ अस्पताल के भी सहायता ले सकत हो सरकारी अस्पताल में जा सकता हो नशा मुक्ति केंद्र जो है वहाँ भी उखर से भी सहयोग ले सकत हो ताकि आप नशा अगर है तो उखर से भी आप मन हाँ मुक्त हो सको। तो आप मन हाँ स्वयं जागरूक रहो स्वयं जिम्मेदार बनाओ और स्वयं संकल्प अपन दृढ़ कराओ कि नशा से दूर रहना है नशा से मुक्त होना है और स्वयं भी दूर रहो और दूसर मल्ला भी एक प्रति जागरूक करो कि नशा मुक्त रहना है तभी अपन और अपन जो परिवार है समाज है उकर विकास हो सकते देश के विकास हो सकते। तो बहनी हो ये तो है से गोट का देवा आओ हम ना आगू बढ़बो गोट माँ उकर पहली चला सुनिए लोकगीत ला।

बनी हो लोकगीत सुनन जकर कलाकारी ने बैतल राम साहू और रामनाथ कुंजाम और बहनी हो लोकगीत तो है इसका देवा और हमार गोट चर्चा के विषय है अभी बखत बेरा के हिसाब ले बदलते मौसम में रखें खान पान और सेहत का ध्यान। बहनी हो मौसम तो गर्मी के चलत हवे लेकिन संगे संग मानसून के बेरा भी आगू आवा थे ता ऐसे बेरा में अपन सेहत के ध्यान बहुत ज़्यादा रखे के हवे और खास करके जो लइका मन ही और सियान मन ही घर के ओकर मन के तो और भी ज़्यादा ध्यान दे के जरूरत रही थे। बहनी हो गर्मी के हिसाब ले शरीर ला ठंडक दे वाला भोजन खाना पीना तो अभी भी चालू रखना इच्छे का देवा त खाए पिए में ऐसे जिनिस ला शामिल करा जैसे कि मौसमी फल फलहारी जो अभी मिला थे और जो मौसमी साग सालन है एकर भरपूर उपयोग करा और घाम में कहीं भी जात हन त घाम के बेरा जो है बहनी हो ध्यान करके अगर दोपहर के समय में जहाँ तक हो सके जब तक कोनो जरूरी काम ना हो तब तक झन निकले के हवा खास करके लोग लइका मल्ला तो बाहर झन ही जान देना है और सियान मल्ला भी अपन घर में ही रहना है ये बेरा में तो ये बात के जरूर करके ध्यान रखे के है और जाना भी पड़ाते तो जरूर करके पूरा प्रबंध से निकला यानी कि टोपी गमछा जो भी आप मन उपयोग करा था छाता और फूल अस्तीन के सूती कपड़ा घर से पहन के निकला बढ़िया कर ले तोप ढाक के और घर से पानी पी के जरूर निकला और संग में हो सके तो बहनी हो जरूर करके सुरता करा और पानी के बोतल लेके अपन साथ में चला अपन घर के पानी ये चीज़ क्या मतलब बहुत ध्यान रखे के है और बहनी हो ध्यान रखे के है कि कटे फटे जो भी बाज़ार में मिलते खुला में बिकत हुए ये ऐसे फल या फिर साग सालन ला लेके नहीं है यह सेहत ला ख़राब कर सकते हैं तब नहीं हो ये चीज़ के आप मन ला जरूर करके ध्यान रखना है कि जो खान पान है वो अपन घर के ताज़ा रहे और वैसे ही अचानक बहनी हो अब मानसून के बेरा भी हवा है तो कभी भी मौसम बदल जाते कभी भी धूल आंधी चला थे और पानी बरस जाते तो अभी के जो बरसाती पानी है बहनी हो उमा भीगे से बचना है ये आपके सेहत ला ख़राब कर सकत है तो अपन सेहत के ध्यान रखा और स्वस्थ रहा और हर मौसम के मजा लेवा एकरे संग बहनी हो हुआ थे जाए के बेरा तो देवा विदारी नला राम राम जय जोहार।

ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सात मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:20, 7:08, 30 पर किसानवाड़ी लेकर आएंगे 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा फसल अवशेष को जलाए नहीं सड़ाकर खाद बनाएं, खेत बचाओ अभियान। नसीहत में आप सुनेंगे छोटे और सीमांत किसानों के लिए मासिक पेंशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर साइंस एंडरटेक थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे 9:25 पर। 9:00 विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विविध संगीत सुनेगा रात 10:00 पर आपकी फरमाइश लेकर आएंगे।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम।

0: रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: मृतक के वारिसानों के पता तलाश हेतु सूचना सुनी। थाना चक्रधर नगर रायगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार 16/1/2026 को दोपहर 1:43 को अज्ञात पुरुष पेट्रोल पंप टीवी टावर रोड में बेहोश पड़ा था। डायल 108 वाहन के द्वारा मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में लाकर भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 17/1/2026 को शाम 7:08 पर उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का हुलिया, बाल का रंग काला, काली मूछ, गले में बाजारू चेन, सफ़ेद नीला धारीदार रंग का अस्पताली कपड़ा है। अज्ञात मृतक के वारिसानों का अब तक पता नहीं चल सका है। यदि इस हुलिये से मिलते किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो कृपया थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में इसकी सूचना दें। मृतक व्यक्ति से संबंधित सूचना समाप्त हुई। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 MHz पर। 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: उदयपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। छह बजकर दस मिनट होने को है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हर नीति आयोग के शासी परिषद के बैठका में कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली दो दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आही। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग कनी बैठका। और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन है कि दुनिया ये बखत अस्थिरता के दौर ले गुजरत है, फिर भारत आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प के संग विकास के रद्दा में आगू बढ़ा थे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठका के अगुवाई करत श्री मोदी है कहिन कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य कोती बढ़त है तो ऐसन बेरा में केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक जिम्मेवारी बढ़ जत है। उमन कहिन कि राज्य के बीच सहयोग बात और विचार साझा होना चाहिए। संगे संग नीति आयोग एमा मदद करे खातिर सबले बने भूमिका निभा सकत है। प्रधानमंत्री हकीन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौशल विकास और युवा मन बर रोजगार दिवाना ये प्राथमिकता बने रहना चाहिए। कृषि और स्टार्टअप लले के विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सबो क्षेत्र में अपन योगदान देवत है। एक सीती राज्य मल्ला माइलोगिन के शिक्षा कौशल विकास सुरक्षा और सशक्तिकरण ला प्राथमिकता देना चाहिए।

0: चिकित्सक के बैठका के विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठका में सबो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग लेवा थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 12 जून के 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। ओमन प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रम के संगे संग विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संगरही, संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग बैठका करही। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली मंझनिया रायपुर के सड्डू क्षेत्र के अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होही। एकर बाद संझा कुन राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होही। संझा ही श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मनसंग बैठका करही। केंद्रीय मंत्री अवैया दिन 13 जून के कलेक्टोरेट परिसर के बाबा साहेब अंबेडकर चौक में सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होही। और खालसा स्कूल के आगू ऑक्सीजोन में पौधारोपण करके बूढ़ा तरिया तीर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लीही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कही नहीं कि किसान मन के विकास सरकार के सबले पहली प्राथमिकता है। सरकार उखर जीवन ला सरल बनाए के हर संभव प्रयास करत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कही कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ है। उमन कही कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना किसान मन के आमदनी की रक्षा करत है, उन्हें किसानी ला और मजबूत बनावत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हां आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में रखे गए कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन वर्चुअल रूप ले करीन। ये कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत आने बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। ये मौका में श्री वैष्णव हां सामरिक और संरचना में ध्यान देवत आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सीमावर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था ला मजबूत करे बर आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सरकार के प्रतिबद्धता में प्रकाश डालीन। उन्हें उमन समय के संग परिवर्तन में बल दीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहने कि देश के 140 करोड़ लोगन के आकांक्षा जरूर पूरा होही। उमन कहन की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA है देश के भरोसा ला मजबूत करे है। नई दिल्ली में NDA के बैठका में बोलत उमन कहन कि बछर 2014 में आशा के जौन किरण जागे रहीस वो आज नवा आत्मविश्वास के किरण में बदल गए है। उमन यहू कहन की पहली गांव देश के जनता है देखे है कि जब कोई सरकार सही सोच ले चलाए जाते तो विकास घलो तेजी ले होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए में नई दिल्ली के भारत मंडपम में राखे गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है श्री मोदी ला बधाई दीन। उमन कहन की पाछू 12 बछर जनजाति समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास बर स्वर्ण काल रहे है। मुख्यमंत्री है कहन की केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास ले छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या कमती हुए है। उमन कहन की जनजाति क्षेत्र में बुनियादी सुविधा, कनेक्टिविटी और आजीविका के मौका तेजी ले बढ़वार होवत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर है कहीन है कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नो है, भलुक राष्ट्र निर्माण के आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत बनाए खातिर हर एक नागरिक के भागीदारी जरूरी है। उमन कहीन की जब तक स्वच्छता जन आंदोलन के स्वरूप नहीं ली तब तक विकसित भारत के लक्ष्य पूरा रूप ले साकार नहीं हो सके। श्रीमती ठाकुर है काली बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में रखे गए स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता करी। ये मौका में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू समेत आने जनप्रतिनिधि घलो मौजूद रहीन। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा है कहने कि गांव के युवा मन के बेरोजगारी, मोबाइल और नशीला जिनिस की लत जैसन चुनौती ले निपटे खातिर राज्य सरकार कौशल विकास में विशेष जोर देवत है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम में बोला श्री मिश्रा है कहन कि सरकार 15-29 बच्छर के युवा मन ला रोजगार और स्वरोजगार ले जोड़े बर अवैया 6 महीना में विशेष कार्य योजना तैयार करही। रायपुर जिलामां बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा के गुणवत्तामां सुधार लाय पर मिशन उत्कर्षमां काली राजधानीमां सबो प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य मन के बैठका हुई। बैठकामां कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह सरलक कमजोर नतीजा देवैया स्कूल के समीक्षा करे के संगे संग विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावक मन ले फीडबैक लेके निर्देश दीन। तो मन की हिन की कमजोर परीक्षा के नतीजा फर्जी पंजीयन नियमित कक्षा के अभाव और आने गड़बड़ी मां कड़ा कार्रवाई करे जाही। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ह 28 दिन अधिकारी मन के तबादला कर दे हे। विभाग कोती ले जारी आदेश के मुताबिक जिला के शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहायक संचालक और प्राचार्य मल्ला आने आने जिला और कार्यालय में नवा जिम्मेवारी सौंपे गए हे। महासमुंद रायपुर बिलासपुर समेत कई जिला में नवा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति करे गए हे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए हैं। उमन श्रीलंका में होवैया T20 और वन डे सीरीज के दौरान उप कप्तान के रूप में टीम में भाग ली। वित्त मंत्री ओपी चौधरी है महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होए में बधाई और शुभकामना देवत की हीन कि ये उपलब्धि उखर सरलग मेहनत अनुशासन और खेल बर समर्पण के परिणाम हवे। उमन यहू की हीन कि एखर ले प्रदेश के आने युवा खिलाड़ी विशेष रूप ले नोनी मल्ला खेल में आगू बढ़े और बड़े सपना देखे बर प्रेरित करही। राज्य सरकार है विधायक मन पर अपन विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा लेके अनिवार्यता के आदेश में फेरबदल करे है। अब कोनो भी विधायक अपन विधानसभा क्षेत्र ले बाहिर दिगर जिला में पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा ले सकी इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग सबो जिला कलेक्टर मल्ला चिट्ठी जारी कर दे है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पुलिस अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 जिन सदस्य मल्ला गिरफ्तार करे है। इकहत्तर ले करीबन 38 तोला सोना 1.5 किलो चांदी चोरी के रकम ले बिसाए गए चौपहिया गाड़ी 2 फटफटी मोबाइल फोन समेत चोरी मां बौरे गए आने उपकरण जब्त करे गए है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मन गजब दिन ले चोरी के घटना ला अंजाम देवत रहीन। आखिर मां प्रमुख समाचार एक घाव फिर प्रधानमंत्री है नीति आयोग के शासी परिषद के बैठका मां कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 2 दिवसीय दौरा मां छत्तीसगढ़ आही विकसित भारत संकल्प सम्मेलन मां संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग करही बैठका और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हो है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कुमार सानू साधना सरगम की युगल आवाजों में लीजिए सुनिए द डॉन फिल्म के इस नगमे को जिसे लिखा है अनवर सागर ने, धुन बनाई है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
4: श्रोताओ, संदेश से पहले आप सुन रहे थे ये लम्हे जुदाई के, फिल्म के गाने को कुमार सानू साधना सरगम की आवाजों में, संगीत से सजाया था निखिल विनय ने, योगेश के शब्द थे। कार्यक्रम में अब सुनिए अलका याग्निक कुमार सानू को जमाने से क्या डरना, फिल्म के गाने में गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म के गाने को। अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम की आवाज़ों में रहमान ने संगीत दिया था, आनंद बख्शी ने गीत लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 107 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:45 होने वाले हैं। कुछ पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे।
1: इस कार्यक्रम में कलाकार

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे, प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंड लेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता, और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
12: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
11: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कल दोपहर रायपुर के सड्डू इलाके में स्थित अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कल ही शाम श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अगले दिन 13 जून को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहब अंबेडकर चौक पर सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह सदर बाजार के पास बूढ़ा तालाब पहुंचकर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छ जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने विधायकों के लिए अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों से सेवाएं प्राप्त करने की अनिवार्यता के आदेश में संशोधन किया है। अब कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे जिले में पदस्थ कर्मचारियों की भी सेवाएं ले सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध सांसदों के मामले में लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्ययोजना तैयार करेगी। उन्होंने यूएनडीपी को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेल स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। जहां भी सुरक्षा संबंधी कमियां मिलेंगी वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे। रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें यह जांच करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ एजेंसियों और राज्य फायर विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। नवा रायपुर स्थित सेंडलेक में कल से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग किनोइंग प्रतियोगिता शुरू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग किनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायकिंग किनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे T20 और वनडे सीरीज के दौरान उपकप्तान के रूप में टीम का हिस्सा होंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। श्री चौधरी ने कहा कि उनके चयन से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ी, विशेषकर बेटियां, विभिन्न खेलों में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित होंगी। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले की

0: पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 38 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, चोरी की रकम से खरीदा गया 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सहित चोरी में इस्तेमाल किए गए अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रायपुर जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिशन उत्कर्ष के तहत कल राजधानी में सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने लगातार कमजोर परिणाम देने वाले विद्यालयों की समीक्षा करने के साथ ही विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावकों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमजोर परीक्षा परिणाम, फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षाओं के अभाव और अन्य अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष कक्षा 10वीं का औसत परिणाम 71% से अधिक और 12वीं का लगभग 85% रहा, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। हालांकि कुछ निजी विद्यालयों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। और नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, 1 नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंडलेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर काइकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता। और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर-19 टीम में हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी,
2: हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। आइए सुनते हैं सुर फिल्म के गाने को, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, संगीत दिया है M.M. करीम ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: जमाना दीवाना फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे अभिजीत अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत में प्रियथा नदीम, श्रवण ने समीर के बोल थे। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सुनिए वास्तव फिल्म के गाने को। आवाजें हैं सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति की, शब्द रचना है समीर के, संगीत है जतिन ललित का।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली,
6: सुनो निगम और कविता कृष्णमूर्ति के गाइस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाड़ी सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी लइका सियान जवान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। औ आप सबो संगी संगवारी मन के हमर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और देखा संगवारी हो जून के महीना चलत है कहा और अभी खेत बचाओ अभियान भी चलत है। एहर 1 जून ले 30 जून तक पूरा देश भर में एला अभियान ला चलाए जाते कहा। और ये अभियान के उद्देश्य हवे संगवारी हो कि माटी के सेहत ला सुधारना। काबर कि पिछले कुछ दशक में कुछ साल में रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल ले अत्यधिक उपयोग ले हमार माटी हर बंजर हो गिसे, बंजर हो के कगार में पहुँच गिसे। तो एकरे खातिर ये अभियान ला चलाए जाते। और ये अभियान के लक्ष्य ये हवे कि माटी के जो उपजाऊ क्षमता है ओला वापस लौटाना हवे। और लागत कम करना आय बढ़ाना एहर भी एकर उद्देश्य हवे। और प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा देना। कबर की रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करके हमन जैविक और प्राकृतिक कृषि तकनीक के तरफ हमन कदम बढ़ा सकत हन। यानी कि हमला प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा देना है एकर यहर उद्देश्य हवे। और संगवारी हो हमार आज के बाद के विषय हवे फसल अवशेष को जलाए नहीं सड़ा कर खाद बनाए। तो देखा संगवारी हो फसल अवशेष यानी कि जो पैरा है एला जलाए के बदला हमन ओला का कर सकत हन हमार गाय गरुला खिला सकत हन ओकर उपयोग खिला में कर सकत हन। और संगे संग मशरूम उत्पादन में भी कर सकत हन। ओकर बाद भी जब हमार पैरा हर बच जाते तो ओला हमला सड़ा जलाना नहीं है संगवारी हो बल्कि ओला सड़ा करके हमला अच्छा से जैविक खाद कंपोस्ट खाद बनाना है। और यहर बहुत ही लाभदायक रही थे। तो संगवारी हो देखा खेत में पैरा ला जलाए ले का होते हमार जो धरती दाई है एकर तबीयत हर खराब हो जाते। मित्र कीट मन मरत जाते और माटी के जो नमी है ओहर ख़त्म हो जाते। और जो हवा है ओहर भी प्रदूषित होते संगवारी हो जलाए ले। तो ओकरे सेती हमला फसल और सेसला जलाना नहीं है ओला सड़ा करके हमला खाद बनाना है। और ये खाद हर हमार खेत पर बहुत ही उपयोगी हवे और लाभदायक हवे। तो आवा संगवारी हो जानबो कि फसल अवशेष माने कि पैरा ला हमन कैसे सड़ा करके खाद बना सकत हन। तो सबले पहली तो वेस्ट डीकम्पोजर तकनीक हवे। वेस्ट डीकम्पोजर ले हमन पैरा ला सड़ा के बहुत ही अच्छा एकर खाद बना सकत हन। एहर सबले बढ़िया सस्ता उपाय हवे संगवारी हो। तो घोल बनाए के तरीका ला जानबो एकर। सबले पहली तो 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ लेना है और 1 बाटल यानी कि 1 सीसी वेस्ट डीकम्पोजर के घोल ला ओमे मिला देना है। और मिला देना है यानी घोल देना है ये सब बोला। और 7 दिन भर छाँव में एला रख देना है और रोज़ लाठी में ओला एक बार हिलाना है कहा। अब एकर उपयोग कैसे करबो तो खेत में पैरा ला छोटे टुकड़ा में काट लेबो या फिर नहीं काटा थन तो ऐसने ओला फैला करके ओकर ऊपर ये जो घोल बनाए हन यही घोल ला हमला का करना है छिड़क देना है छिड़काव कर देना है। फिर 15 से 20 दिन में पैरा हा सड़े बर चालू हो जाही और हर माटी में मिल जाही संगवारी हो। ये तो इस एक ठन वेस्ट डीकम्पोजर तकनीक ले पैरा ला सड़ा करके खाद बनाए के। अब दूसर तकनीक हवे सुपर कंपोस्ट विधि या फिर ढेर तकनीक। यदि आप मन के खेत के एक कोती पैरा ला जमा करके खाद बनाना चाहत हो तो ये तरीका ला अपनावा आप मन। सबले पहली तो छाँव वाले जगह में या फिर ऐसे ही 10 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है या फिर जमीन के ऊपर ही हमला पैरा के ढेर बनाना है। और सबले पहली 6 इंच पैरा के परत बिछाना है ओकर ऊपर जो गोबर पानी के घोल है या फिर वेस्ट डीकम्पोजर के घोल है ओला हमला छिड़क देना है कहा। ऐसे छिड़क के बाद ओहर धीरे धीरे सड़े बर चालू हो जाते संगवारी हो। तो माटी पर नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है कहा। तो हर परत में थोरकून यूरिया लगभग 1% या फिर सिंगल सुपर फास्फेट छिड़क देवा। एकर ले का होते पैरा हर जल्दी सड़ते और खाद हर ताकतवर बनते।
और हर 15 से 20 दिन में खाद ला ऊपर नीचे हमला पलट देना है, जेकर से हवा मिलही और सड़न जल्दी होही। तो 2 से 3 महीना में बढ़िया करिया भुरभुरा खाद तैयार हो जाही संगवारी हो। ये तकनीक ले गड्ढा या ढेर तकनीक ले, सुपर कंपोस्ट विधि या फिर ढेर तकनीक ले। तो एक ठन और तकनीक हवे, केचुआ खाद हमन बना सकत हन वर्मी कंपोस्ट। पैरा ला का करना है, छोटे छोटे टुकड़ा काट के केचुआ खाद इकाई में हमला डाल के बहुत ही सुघर खाद हमन बना सकत हन कहा। अब ध्यान रखिए संगवारी हो कि केचुआ मन सीधा जो कड़ा पैरा रथे ओला सीधा का करते नहीं खा सके, तो एकरे सेती पैरा ला गोबर पानी के साथ 15 से 20 दिन आधा सड़ाए के बाद ही केचुआ टब में डालना चाहिए। यानी कि पैरा ला हमला आधा सड़ाना है, ओकर बाद ही ओमें केचुआ डालना है। ये तो ही संगवारी हो ये सबो प्रकार के तकनीक हवे, जेकर से हमन फसल अवशेष ला सड़ा करके खाद बना सकत हन। अब संगवारी हो प्रश्न होगी बेला होगी इस ना कृषक प्रश्न मंच के कोती जाए के। तो आज के प्रश्न हवे, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसान ला कतका रुपए के निश्चित मासिक पेंशन मिलते? तो संगवारी हो एक बार और प्रश्न ला सुन लेवा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसान ला कतका रुपए के निश्चित मासिक पेंशन मिलते? तो संगवारी हो आप मन एकर उत्तर हमर कोती जरूर लिख के भेजिया, हमला आप मन के उत्तर के अगोरा रहते कहा। और आप मन एकर उत्तर ईमेल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से लिख के भेज सकत हवा। तो संगवारी हो अब बेरा होगी ना एक ठन भेंटवार्ता सुने के कहा। तो खेत बचाओ अभियान

0: किसानों के लिए लाभप्रद फफूंद ट्राइकोडर्मा। मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़। तो आवा एला सुन लेबो ये भेंटवार्ता ला।
1: संगी हो, खेत बचाओ अभियान चलत हवे, 1 जून 2026 ले शुरू होए है। ऐसने में मैं भेंट करत हाँ मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ ले। एमन बताही जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा के बारे में। तो सर आप मनला राम राम जय जोहार।
2: आप मनला और आपके सभी श्रोता मनला राम राम जय जोहार।
1: तो सर आप मन ये बताहा कि ट्राइकोडर्मा का होथे।
2: ट्राइकोडर्मा एक तरह के मित्र जैव फफूंदनाशक है, जेकर उपयोग हमन खेती में जो जड़ से संबंधित जो बीमारी रोगजनक होते हैं, जो फसल ला मार देते हैं, फसल के उत्पादन ला प्रभावित करते हैं, गुणवत्ता ला प्रभावित करते हैं, तो ऐसे रोगजनक के निदान के लिए ट्राइकोडर्मा भी एक जैव फफूंदनाशक है। ओकर निदान के लिए हमन ट्राइकोडर्मा ला उपयोग करथन।
1: हाँ सर, तो ये ट्राइकोडर्मा कैसे रही थे?
2: ट्राइकोडर्मा के व्यवसायिक उत्पाद के बारे में हमन बात करबो तो ये 3-4 प्रकार के होते, जिनमें सबसे पहले तो ये तरल माध्यम में होते, तरल माध्यम में लिक्विड की तरह होते, जेला हमन थरहा उपचार या फिर ड्रेंचिंग जो जड़ में हमन डालथन, तब एकर कॉन्सेंट्रेशन बना के घोल बना के एला हमन उपयोग करथन। दूसरा बीज उपचार के रूप में वहा पाउडर फार्म में रहते, तो बीज लो उपचारित करे बर ये पाउडर फार्म के उपयोग करथन, जरा सबसे ज्यादा किसान भाई उपयोग करते। और तीसरा होते केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा मिक्स रहते, तो मृदा उपचार जब करथन, लास्ट जब खेती की तैयारी करथन, तो एला मृदा लो उपचारित करे बर हमन ये माध्यम लो उपयोग करथन। तो सामान्यतः 3 तरीके के माध्यम किसान भाई उपयोग करते।
1: हाँ तो सर मोर अगला सवाल है, ट्राइकोडर्मा के उपयोग करे के विधि कैसे रहते?
2: बहुत अच्छा सवाल है, किसान भाई मन जनरली मतलब उपयोग विधि के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं और पूछते हैं। तो सबसे पहले तो बीज उपचार करथन, तो बीज उपचार के रूप में वो जो पाउडर फार्म में रहते ओला करथन। तो सबसे पहले जेला हमन खेती में बोबो या फिर थरहा लगाबो, वो बीज के चयन करे के बाद बीज ला एक बोरा में या फिर साफ सुथरा जगह में फैला देबो, प्रति किलोग्राम 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेबो और ओला अच्छे तरीके से बीज में मिक्स कर देबो और ओला छाये में लगभग आधा घंटा तक सुखा देबो। ओकर बाद किसान भाई ओला बीज ला बोए में उपयोग कर ली।
1: हाँ सर, आप मन ट्राइकोडर्मा के जो उपयोग विधि है एला बहुत ही अच्छा से बता। आप मन ये बता कि ट्राइकोडर्मा के जो उपयोग करे के मात्रा है, एकर मात्रा ला थोड़कन बता।
2: हाँ, ट्राइकोडर्मा में जैसे बीज के उपचार के रूप में हमन उपयोग करथन तो 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेथन, वहीं अगर थरहा उपचार करथन तो 10 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के ओला हमन जतका हमन ला क्वांटिटी चाहिए ओकर अकॉर्डिंग बना लेथन। और मृदा उपचार करथन तो 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ला 100 किलोग्राम केचुआ खाद में या फिर गोबर के खाद में अच्छी तरीके से मिला के जब लास्ट खेती की जब तैयारी करथन जुदाई करथन तो हमें मिला देथन और इस तरीके से हमन ट्राइकोडर्मा के उपयोग करथन।
1: हाँ तो सर, जो ट्राइकोडर्मा आप मन अभी बता थे कर बारे में, तो एकर उपयोग करे में कछु सावधानी अपनाना पड़ते का?
2: ट्राइकोडर्मा के उपयोग में मुख्यतः 3-4 सावधानी विशेष रूप से किसान भाई मन अपनाना चाहिए, जिनमें सबसे पहला ये भी एक लाइव मटेरियल हो, तो एकर जो उम्र होते लगभग साल भर रहते है ना, तो किसान भाई ला ये मतलब सबसे पहली ये सावधानी बरतना चाहिए कि जो भी वो ट्राइकोडर्मा ले थे वह बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए कि वो विश्वसनीय संस्था से ले, या तो कृषि विश्वविद्यालय है या फिर कृषि अनुसंधान है ना, वो वहाँ से ले ही तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो विश्वसनीय रहते। और जब ट्राइकोडर्मा ला हमन जैसे कि केचुआ खाद में या फिर कार्बनिक खाद में मिलाथन, तो मिलाए के बाद बहुत समय तक भंडारित करके नहीं रखना चाहिए, और जब बीज उपचार करथन तो एला मतलब छाया में रखना चाहिए, धूप डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब सावधानी बरत के किसान भाई एकर बेहतर इस्तेमाल कर सकत है और जेकर सीधा प्रभाव खेती में उमल्ला दिखी।
1: तो सर आप मन अभी ट्राइकोडर्मा के महत्व और एकर कृषि में उपयोगिता ये सबो चीज ला बहुत ही सुघर तरीका ले बता, एला हमार किसान संगवारी मन सुन के जरूर प्रेरणा लिही और आप मन के बताए अनुसार मार्गदर्शन अनुसार ही काम करही। तो सर आप मल्ला का अच्छा जानकारी देवा, एकर सेती बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जय जोहार।
2: धन्यवाद।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000

0: ಜಗಪಾವ್ ವಾಹ್ ದಿಲ್ ಬನ್ ಗಯಾ
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: हाँ तो संगवारी हो अभी हमन सुने संदेश कहा और संदेश के पहले सुनत रहन सुग्घर अकन के भेंटवार्ता ला एमे हमर मनोज कुमार साहू वरिष्ठ अनुसंधान सहायक कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ ले बतात रहिन किसान मन बर लाभप्रद फफूंद ट्राइकोडर्मा के बारे में अब संगवारी हो हमार चर्चा कोती आगू बढ़वो तो हमार आज के नसीहत के विषय हवे छोटे और सीमांत किसानों के लिए मासिक पेंशन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देखा संगवारी हो हमार प्रधानमंत्री डहाल ले सरकार डहाल ले नाना प्रकार के बढ़िया बढ़िया योजना चलाए जाते तो ये सब्बो योजना में एक ठन योजना हवे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना तो संगवारी हो छोटे और सीमांत किसान भाई बहनी मन बर ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है एहर बुढ़ापा के एक ठन बड़खा सहारा है ये योजना ले किसान मन ला हर महीना पेंशन मिलते संगवारी हो अब योजना में का मिलते कहले एकर फायदा का होते तो 3,000 रुपये हर महीना एमे पेंशन मिलते जब किसान के उम्र 60 साल हो जाही तो ओला हर महीना 3,000 के गारंटी पेंशन मिली कहा और अगर पेंशन भोगी किसान के निधन हो जाही तो ओकर जो घर वाली है या फिर पति है ओला आधा पेंशन मिली यानी कि 1,500 रुपये हर महीना ओला मिली अब ये योजना में कौन कौन जुड़ सकते हैं संगवारी हो एकर पात्रता के बात करबो तो वो सबो छोटे और सीमांत किसान जेकर करा 2 हेक्टेयर यानी कि लगभग 5 एकड़ या ओकर से कम खेती के जमीन है तो ये योजना में जुड़ सकते हैं और ये योजना में जुड़े के समय किसान के उम्र 18 साल ले लेके 40 साल के बीच में होना चाहिए अब संगवारी हो पैसा कैसे जमा करना पड़ते एमे अंशदान कैसे देना पड़ते तो ये हर एक ठन सरकारी पेंशन योजना है एमा आधा पैसा किसान देते और आधा पैसा सरकार दे सरकार ले मिलते कहा अब उम्र के हिसाब से हर महीना 55 रुपये ले लेके 200 रुपये तक जमा करना पड़ते जैसे अगर कोनो किसान के कोनो किसान हर 18 साल में जुड़ा थे तो ओला 55 रुपये देना पड़ी और 40 साल में जुड़ा थे तो ओला 200 रुपये देना पड़ी कहा और देखा संगवारी हो जतका पैसा किसान जमा करही उतकी 6 पैसा यानी कि 1:1 के अनुपात में भारत सरकार घलो ओकर खाता में अपन तरफ से मिला ही अगर आप मन चाहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि के जो मिले वाला पैसा है एकल ले भी घलो जो हमन जमा करथन यह सीधा हमन कटवा सकथन अब कैसे करवो रजिस्ट्रेशन के बात करथन तो रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम आसान और मुफ्त हवे अपन के लखठा के CSC सेंटर यानी कि चॉइस सेंटर में जाना है और संग में आधार कार्ड और बैंक खाता के पासबुक ला लेके जाना है और वहाँ हमार एमा फार्म भरा जाही और आप मल्ला किसान पेंशन अकाउंट नंबर मिल जाही कहा तो ये योजना हर बहुत ही अच्छा योजना हवे संगवारी हो एहर छोटे और सीमांत किसान मन बरे एहर बुढ़ापा में सहारा है संगवारी हो बुढ़ापा में देखा कछु सहारा नहीं रहले अच्छा नहीं हो पाए जीवन हमन अच्छा से नहीं जी पान ओकरे सेती हमला ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है एमे हमला जरूर भाग लेना है ये योजना के लाभ उठाना है अब संगवारी हो हमार आज के टिप के भी विषय हवे प्रकृति का आधार खेती के लिए वरदान ढैंचा तो देखा संगवारी हो ढैंचा खेती बर प्रकृति के और बहुत बड़े वरदान हवे हर जो ला हमन हरी खाद के रूप में भी जानथन हमार किसान भाई मन एकर महत्ता ला बहुत बढ़िया से समझते कह देखा आप मन जानते छवर ढैंचा जो लहमन हरी खाद कथन कहा एहर माटी बर टानिक के काम करते ढैंचा के पौधा हर माटी ला भरपूर नाइट्रोजन देते संगवारी हो एक जड़ में ऐसन बैक्टीरिया पाए जाते जोन हवा से नाइट्रोजन लेके भुइयां म जमा करथे। एकर सेती जब एकर फसल ल खेत म ही जोत के मिला दे जाथे तो माटी हर उपजाऊ हो जाथे। अब संगवारी हो, रासायनिक खाद के बचत भी हो जाथे कहा, जब हमन ढैचा लगाथन हमार खेत में, तो अगर आप मन ढैचा ला हरी खाद के रूप में अपन खेत में मिलावत हो तो धान या दूसर फसल लगाए के वक्त यूरिया या फिर डीएपी खाद के जरूरत बहुत कम हो जाथे। एकर सेती किसान मन के खर्चा बाँचते और फायदा ज़्यादा मिलते कहा, यानी कि ढैचा लगा के हमन जो रासायनिक खाद है एकर बचत कर सकथन और हमर माटी ला उपजाऊ हमन बना सकथन। और एकर से का होते संगवारी हो, माटी के सेहत हर भी सुधरते। देखा संगवारी हो, रासायनिक खाद के ज़्यादा प्रयोग ले माटी कड़ा हो जाते, ढैचा ला खेत मा सड़ाए ले माटी मा ह्यूमस यानी जैविक तत्व हर बाढ़ते, जेकर से माटी ह भुरभुरी और नरम हो जाते। खेत मा पानी रोके के क्षमता बाढ़ जाते और जो माटी के सेहत मा का होते, हमर खेत के माटी के सेहत मा सुधार आते। और संगवारी हो, खरपतवार ले छुटकारा भी मिलते, ढैचा के पौधा हर तेजी से बाढ़ते, ये हर खेत में ऐसन छा जाते कि दूसर कतको किस्म के खरपतवार कचरा कुटा है एला बाढ़े के मौका ही नहीं मिले, यानी बिना दवाई छिड़के कचरा साफ हो जाते, यानी बंद कचरा खरपतवार हर साफ हो जाते। ढैचा ला खेत में मिलाए के सही समय का हवे, जब ढैचा के पौधा हर लगभग 40 ले 45 दिन के हो जाए यानी कि फूल आए के पहली, तब ओला रोटावेटर या फिर नांगल ले चला के खेत के माटी में हमला दबा देना चाहिए। ओकर बाद सड़े बर हफ्ता 10 दिन ओला छोड़ देना चाहिए, फिर ओकर बाद हमला धान के रोपाई करना चाहिए। तो ये जो ढैचा है यहर बहुत ही अच्छा हवे संगवारी हो, प्रकृति के उपहार हवे, हरी खाद हवे, एकर आप मन जरूर उपयोग कराओ और अपन के माटी के सेहत ला सुधारो, अपन के जो फसल के उपजाऊ क्षमता है ओला बढ़ावा। तो आवा संगवारी हो, एक ठन औ भेंटवार्ता सुन लेबो। खेत बचाओ अभियान हरी खाद का उपयोग एवं लाभ विषय पर गोपाल प्रसाद चंद्रा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लैलुंगा से रामविलास पटेल की भेंटवार्ता। तो आवा एमन के भेंटवार्ता ला सुन लेबो।
2: संगवारी हो, राम राम, जय जुहार। जल जंगल जमीन ये हावे जीवन के आधार। संगी हो, जमीन ला बनाए रखे बर यानी जमीन की उर्वरता ला बरकरार रखे बर संगवारी हो, भारत सरकार के डहल ले चलाया जाते खेत बचाओ अभियान। माननीय कृषि मंत्री जी के आह्वान चली से वहाँ की पूरा कृषि विभाग के अमला घर गाँव जाते चौपाल करे थे, बैठकी करे थे। वही प्रयास में संगवारी हमन गांव में आए हैं, एक क्षेत्र विशेष में आए हैं और उमन से जानबो कि खेत बचाओ अभियान का हावे और एकर तहत का जानकारी साझा किए जाते और किसान मन कैसे लाभान्वित होते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गोपाल प्रसाद चंद्रा जी। चंद्रा सर, आप मतलब हमारे डाल राम राम, जय जोहार।
4: जय जोहार, राम राम, सभी किसान भाइयों को जय जोहार, राम राम।
2: तो बताओ खेत बचाओ अभियान कहाँ है संगवारी यार, कहाँ
4: खेत बचाओ अभियान जो है? अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम लोग अभी गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर किसानों को समझा रहे हैं कि जैविक खेती करिए अपने खेत में, मतलब जो रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, उनको हम जैविक खेती की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चूंकि जो लैलुंगा ब्लॉक है जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है और बहुत से किसान जैविक खेती करने के लिए उत्साहित हैं और जवां फूल यहां का प्रसिद्ध
2: ब्रांड भी
4: ब्रांड है उत्पादन जो अभी हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर चावल का सप्लाई कर रहे हैं अच्छे दामों पे। धान का बीज भी हम लोग अभी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस साल हम जवां फूल का भी खेती का विस्तार बहुत क्षेत्रों में हो गया है, बहुत ज्यादा एकड़ में कर रहे हैं।
2: अच्छा।
4: और अभी किसानों को हम लोग खेत बचाओ अभियान में जैविक खेती के तहत ग्रीष्मकालीन जुताई के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद और हरी खाद उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे जैविक खेती को और बढ़ सके किसान।
2: हाँ।
4: और जिससे उनको खेती करने में लागत कम आए और खेत का जमीन है जो सालों साल उनके अगले पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे और खेती का कार्य करते रहे।
2: हाँ, संतुलित उर्वरक के उपयोग करें किसान भाई मन, ताकि भुइयां जो नठात जाते, भुइयां के जो उपजाऊपन घटत जाते,
4: बहुत ज्यादा खराब हो गया है, वहाँ पे हरी खाद जैविक खाद कंपोस्ट वगैरह यूज करे, और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ रहा है तो बहुत कम मात्रा में संतुलित उर्वरक का उपयोग करे।
2: अच्छा।
4: और धीरे धीरे उसको अगले 2-3 सालों में कम करके जैविक खेती की ओर बढ़े।
2: अच्छा,
4: यही संदेश हम किसानों को गांव-गांव चौपाल लगाकर या बैठकर चौराहे पे बता रहे हैं और उनको करने के लिए बोल रहे हैं।
2: हरी खाद की बात करें तो हरी खाद पर बीज की उपलब्धता कैसे?
4: हरी खाद के लिए हमारे ब्लॉक में, रायगढ़ जिले के ब्लॉक लेलुंगा ब्लॉक में सबसे ज्यादा अभी हरी खाद के लिए ढेंचा बीज 210 क्विंटल उपलब्ध है, जो किसानों को अभी हम समझा कर वितरित कर रहे हैं और उगाने के लिए किसान रेडी भी हो रहे हैं। वो उसके लिए ढेंचा का बीज जो है प्रति हेक्टेयर अभी 20 से 25 किलो बीज लगता है, तो जहाँ पे सिंचाई का सुविधा है वहाँ के किसान अभी तैयार हो रहे हैं, जहाँ पे रोपा और लेही विधि से खेती करते हैं उनको समझा कर हम हरी खाद लगाने के लिए बोल रहे हैं। उसका हरी खाद जो है ढेंचा का बहुत ही लाभदायक सर्वोत्तम हरी खाद है।
2: अच्छा।
4: जिसके लिए किसान को हम बता रहे हैं कि उससे क्या फायदा है, तो किसान सब फायदा जानने के बाद उसको लगाने के लिए बहुत उत्साहित होकर लगा रहे हैं।
2: जी, तो गोपाल प्रसाद जी, आप मन बहुत सुगर जानकारी साझा करा खेत बचाओ अभियान के ऊपर, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।
4: जय जोहार सर, आपने लेलुंगा ब्लॉक का क्षेत्र भ्रमण किया और जानकारी हमारे और अन्य किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुने संदेश कहा और संदेश के पहली सुनत रहे सुग्घर अकन के भेंटवार्ता ला, जोन में हमर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गोपाल प्रसाद चंद्रा जी बतात रहिन कि हरी खाद के उपयोग और ओकर लाभ के विषय में बहुत बढ़िया जानकारी देत रहिन संगवारी हो। तो आवा हमन फिर हमर चर्चा को ती आगू बढ़वो। तो हमर चर्चा के विषय हवे रक्तदान का संकल्प, जीवन बचाने का यही विकल्प। तो संगवारी हो, रक्तदान के संकल्प लेवा यही हर जीवन बचाए के विकल्प हवे। संगी हो, आवा जानबो कि रक्तदान के संकल्प काबर लेना है, काबर की काकरो जिंदगी बाँचते कर संकल्प लेथन तो हमर दे जो एक यूनिट खून ले तीन मनखे मन के जिंदगी है बाँच सकत है संगवारी हो। और रक्तदान के जरूरत बहुत झने आदमी ला पड़ते, कतका रोग बीमारी में पड़ते, कतका दुर्घटना में पड़ते और जच्चा बच्चा यानी कि प्रसव के समय भी पड़ते कहा। तो एकरे सेती हमला रक्तदान के संकल्प लेना है और हमन रक्तदान के संकल्प लेबो तो कतका मनखे के जिंदगी ला हमन बचा सकथन संगवारी हो। और ये हर जो रक्तदान करथन ये हर काकरो बर अमृत बरोबर बन जाते। और देखा संगवारी हो, खून हर यानी कि रक्त हर फैक्ट्री में नहीं बने, खून ला कोनो मशीन या फैक्ट्री में नहीं बनाए जा सके, ये हर सिर्फ एक मनखे हर दूसर मनखे ला दान करके ही दे सकते, यह सिर्फ मनखे में ही बनते। ओकरे सेती हमला दया के भाव रखना है और रक्तदान के संकल्प लेना है संगवारी हो। और रक्तदान करे ले का होते, खुद के सेहत हर भी बढ़िया होते। रक्तदान करे ले हमारे शरीर में जो नवा खून बनते, पुराना खून हर चल देते तो नवा खून बनते, जेकर से जो दिल या हार्ट के बीमारी है एकर खतरा भी कम हो जाते और शरीर में स्फूर्ति भी आते संगवारी हो, फुर्ती भी आते। नवा खून बनी तो अच्छा से चेहरा में चमक भी आही, स्फूर्ति भी आही और बढ़िया हमारे शरीर भर अच्छा हवे संगवारी हो। और देखा जरूरी बात यह हवे कि कौन दे सकत है रक्त, तो जेकर उम्र 18 ले 65 बच्चर के बीच में है, जेकर वजन 45 किलो ले ज़्यादा है, जेला जैसे कोनो बड़का बीमारी जैसे HIV, पीलिया या फिर कैंसर है, तो ये मन रक्तदान नहीं कर सकते हैं। और देखा संगवारी हो, रक्तदान करे ले का होते शरीर में कोनो कमजोरी नहीं आए। कतका मनखे मन सोचते हैं कि हमें रक्तदान करबो तो हमारे शरीर कमजोर हो जाही, हमारे शरीर में फिर से उतका खून बने में बहुत ज़्यादा समय लागही, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हवे संगवारी हो, रक्तदान करे ले बहुत जल्दी खून बन जाते, बस थोड़े से खान पान में ध्यान देवा लागते कहा और कोई कमजोरी नहीं आए, बल्कि मन ला असीम सुघर सुकून मिलते संगवारी हो कि हमर से जो काकरो जिंदगी हर बाँच गि से मन ला बहुत ज़्यादा शांति मिलते। ओकरे सेती आप मन रक्तदान कराओ संगवारी हो और पुण्य ला कमावा। देखा संगी हो, करके देखाओ रक्तदान, मनखे जिंदगी में ए हरे सबले बड़े दान। जब हम लेबो रक्तदान के संकल्प तब मिलही काकरो जिंदगी ला नवा विकल्प। तो संगवारी हो, रक्तदान के संकल्प लेवा, रक्तदान हर सबले बड़का दान है। जब हम खून दान करथन एकर संकल्प लेथन तो हमन कतको झन के जोन उड़त सांस है ओला थाम सकथन, ओला नवा जिंदगी दे सकथन। और देखा अभी हमन चर्चा करें कि खून के कोनो फैक्ट्री नहीं है, एला सिर्फ मनखे के शरीर में ही हर बनते। ओकरे सेती हमला दया के भाव रखना है और सिर्फ दान ही करना है कहा। एक इंसान है दूसर इंसान ला दे कर के ही ओकर जान बचा सकते कहा। तो संगवारी हो, आवा हमन सब मिल करके रक्तदान के संकल्प ला लेवन और जिंदगी बचाए के जो महाअभियान है ओमे हमन हाथ ला अपन बटावन। तो ये तो रही संगवारी हो रक्तदान, महादान, रक्तदान के संकल्प। अब आवा संगवारी हो एक ठन आउ भेंटवार्ता ला सुन लेबो।
2: संगवारी हो आप मन सुनत
1: तो भेंटवार्ता में हवे संगवारी हो, महिलाएं आत्मनिर्भरता के लिए खेती किसानी के साथ सिलाई कढ़ाई से जुड़े विषय पर ममता पटेल ग्राम सेमीकोट विकास खंड बरम केला से मोर होरी से भेंटवार्ता तो आवा एला सुन लेबो।
2: संगवारी हो आप मन सुनत हवा किसानवाड़ी और किसानवाड़ी सुनैया सबो संगी संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। तो संगवारी हो हमार किसानवाड़ी में भेंटवार्ता के क्रम रहे थे, तो यही भेंटवार्ता के क्रम में मैं भेंट करत था एक बहुत ही प्रगतिशील किसानिन बहनी ले जोन मन घर के बूता कामला निपटा के खेती बाड़ी के कामला भी करत हैं और संगे संग सिलाई कढ़ाई के कामला भी करत हैं। तो चला भेंट करबो हमार किसानिन संगवारी ले। तो किसानिन बहनी आप मन ला मोर कोती ले राम राम जय जोहार।
3: राम राम जय जोहार।
2: आप मन के परिचय बताहा।
3: हाँ मैं सेमी कोटले ममता पटेल कहत हूँ। हाँ।
2: अच्छा तो दीदी आप मन अभी का कबूता काम करा था।
3: अभी हमन खेती किसानी तो सकन न कदे।
2: हाँ
3: और पताल पोतली और अभी खत्म हो गए ना।
2: अच्छा
3: बस अभी हमन उरीद उगाए हन।
2: हाँ
3: तो हाँ उरीद में पानी डालता हूँ उनमें और राखड़ रखड़ा देता हूँ।
2: अच्छा अच्छा अभी उरीद लगा
3: है। हाँ
2: और एक पहली पताल लगा रहा था।
3: हाँ,
2: सिराती आगे
3: हाँ, खत्म होने वाला है।
2: तो उरीद जैसे लगा है कहा था, तो उरीद लगा के पहले खेत के तैयारी करना पड़ते कहा।
3: हाँ खेत की तैयारी।
2: तो खेत ला कैसे मतलब तैयारी करता।
3: तो खेत ला जुताई कर थोड़ा में।
2: हाँ हाँ
3: पताल खत्म हो गए तो।
2: हाँ
3: पताल के ला था उला उसका दे हन ओला में फिर जुताई करे हन और बो दे हन।
2: अच्छा हाँ वो है। ओकर बाद का करना पड़ते।
3: बोला बो के सके हम तहा में पानी पलो दे हन।
2: हाँ
3: तहा पानी पलो के सके हम दू चार दिन के बाद तहा उगी से।
2: अच्छा मतलब बोए के तुरंत बाद पानी पलो।
3: हाँ,
2: थे पानी कि एक दो दिन बाद पलो थे।
3: ना तुरंत पानी पलो देबे तो और अच्छा होती।
2: अच्छा अच्छा तुरंत पानी पलो। ओकर बाद चार पांच दिन बाद वह जामगी से।
3: हाँ उगी से।
2: अच्छा उगी से। अच्छा अच्छा तहा उगे के बाद जैसे वह छोटे छोटे रहते तो ओ में कछु जैसे राखड़ खातू उर्वरक डाले वाला थे।
3: हाँ डाले वाला थे वो में कीटनाशक नाशक के।
2: हाँ हाँ
3: दवाई डाले वाला थे।
2: अच्छा
3: कीड़ा मन काट देते।
2: अच्छा अच्छा हाँ छोटे रहते तो
3: छोटे रहते थे। हाँ
2: हाँ।
3: काट देते हैं कीड़ा मन।
2: हाँ
3: तो ओकरे बर हमला जो में कीटनाशक डाले वाला थे।
2: हाँ
3: और तहा ओकर बर ओ में फूल के दवाई दे वाला थे।
2: अच्छा फूल।
3: हाँ,
2: फूल फूले।
3: हाँ अच्छा फूल फूल ही।
2: हाँ
3: और में अच्छा फर धरी कके।
2: अच्छा अच्छा
3: में।
2: हाँ तो जैसे हर पहली ले दवाई डाल देता जैसे कीटनाशक वाला तो हाँ, ज्यादा रोग बीमारी नहीं लगे कहा।
3: हाँ, बीमारी नहीं लगे भी और मस्त फसल उगते भी।
2: अच्छा
3: बढ़िया होती।
2: हाँ तो एमे बीच बीच में जैसे सिंचाई करे वाला थे कहा।
3: हाँ, हाँ, पानी
2: तो आप मन के पास सिंचाई के का साधन है।
3: बोर है जो सिंचाई के साधन।
2: अच्छा बोर है आप मन।
3: हाँ,
2: के पास।
3: बोर है।
2: हाँ तो बोर है तो बहुत ही बढ़िया बात।
3: हाँ,
2: है ना।
3: हाँ,
2: जब मतलब जरूरत पड़े ले चालू कर दाथन कर।
3: हाँ,
2: तो ये जो उरीद के फसल है वो कतका दिन में तैयार हो जाते।
3: यह लगभग ढाई महीना में तैयार हो जाते।
2: अच्छा ढाई महीने तैयार हो जाते। हाँ तो जैसे बीच बीच में रोग बीमारी तो नहीं लगे।
3: हाँ नहीं लगे सबले बहुत कम में वही लग।
2: अच्छा बहुत कम रोग बीमारी।
3: हाँ,
2: लगती।
3: हाँ, हाँ, दो तीन बार छींचे हन दवाई कीटनाशक ला हमन तो हाँ नहीं लगे छींचे।
2: अच्छा तो दो तीन बार कीटनाशक डाले होकर बाद जो गोबर खातू है।
3: हाँ उमें यूरिया राखर डाले हन डीएपी थोड़ कुन डाल दे हन और खातू दे देबो तो और मस्त होते। हमन गाय गोई रखे हन तो हम उमें खाद हमारे खाल डालना जरूरी है।
2: आप मन गाय भी रखे हैं।
3: हाँ, गाय भी रखे हैं।
2: अच्छा तो आप मन मतलब घर के सबो कामला निपटा के जैसे रांधा कुटा है सब कामला कर दार था और बाद गाय गरु के भी सेवा कर दार था।
3: हाँ, हमारे
2: और,
3: सोके।
2: और, हाँ, हाँ। और संग में जो बाहर के खेती बाड़ी के काम है ओला भी कर दार था।
3: हाँ।
2: तो एकर अलावा भी और आप मन कछु काम कर था।
3: हाँ हमारे में सिलाई सिला सब कर था जो।
2: अच्छा
3: सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आती मला।
2: अच्छा
3: पर्दा सरदा गाँथे बार मेटी सेटी सब जानता मैं।
2: अच्छा, अच्छा
3: भी हमन गाथन और सिलाई हर भी थी मोर मस्त चला थे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा चला थे। तो आप मन ये बता कि आप मन जो घर के काम भी करत था पशु पालन के काम भी करत था खेती बाड़ी के काम भी करत था तो सिलाई के काम बार कब तक जहान मतलब समय निकाल था।
3: तो समय सुबह तो उठ के पाँच बजे उठन हमन। पाँच बजे उठ के हाँ पहले तो छड़ा पानी देबो गाय गरु करबो अभू तर बाद खाना बनाथ।
2: हाँ
3: खाना बना के सकथ आठ बजे तहा नौ दस बजे अंग एक खेप सिलाई कर था।
2: अच्छा अच्छा
3: हाँ तहा ग्यारह बजे अंग नहान जाबे नहा धो के आके फिर तहा खाना पीना बना के फिर तहा दो बजे के फिर सिलाई करता हूँ 2 बजे से 4 बजे तक।
2: अच्छा अच्छा, तो आप मन ये बता कि जोन सिलाई कर रहा है ना, तो सिलाई करे के पहले आप मन ट्रेनिंग ले रहा कि आप मन कैसे कैसे हाँ, सिलाई करे बजाना?
3: सिलाई बार में सीखन गे रहेगा।
2: अच्छा सीखन गे?
3: हाँ सीखन गे रहे। मोर बने शौक रही मैं सिलाई कर करे बर नी।
2: हाँ।
3: मोर बने शौक रही हमें कछु काम करी हाँ, हाँ? खाली बैठ के मैं नहीं रहा, जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है टाइप के।
2: हाँ हाँ हाँ, आप हाँ। मन के बहुत ही बढ़िया विचार है, आप मन बहुत अच्छा सोचता
3: हाँ।
2: है ना, मतलब खाली बैठे ले, जैसे खाली दिमाग शैतान के दिमाग हाँ। कहते है ना हाँ। वैसे ही खाली बैठे ले कुछ आमदनी भी नहीं मिले,
3: नहीं मिले
2: और संग में टाइम भी नहीं कटेगा हाँ। है ना, तो आप मन के बहुत ही अच्छा काम चला थे कहा। तो आप मन जैसे सिलाई सीखे है, तो आप मन के जो सगा संबंधी है वो मन से सीखे है?
3: हाँ सीखे। मोर बड़े पापा के बेटी दीदी घर गए हैं सिलाई सीखे बार।
2: अच्छा
3: तो के सिलाई था आज 17-18 साल हो गई ना, 1 साल में 50,000 हो जा सिलाई है।
2: अच्छा 17-18 हाँ, साल हो गए ना
3: हाँ सिलाई है।
2: अच्छा तो 1 साल में 50,000 आमदनी हाँ, हो जाते हाँ, ये तो हाँ, बहुत ही बढ़िया बात
3: सब है। अपना अपन के काम करता रहते हैं घर के
2: हाँ,
3: वो मन बाहर नहीं निकले तो वो मन और ज्यादा सिलते मोल ले।
2: अच्छा अच्छा,
3: हमें डोली खेत गाय गोरु सब करता नहीं
2: हाँ, हाँ,
3: थोड़ी उम्र कम होती सिलाई हर
2: हमें
3: टाइम टिके दे नहीं सका था
2: हाँ,
3: सही
2: मतलब आप मन घर सब खेती बाड़ी के भी काम करा था ना, ओकरे खातिर कम होते कहा, मतलब जो भी हो जाते अच्छा हो जाए है ना,
3: हम खुश हन हम सिलाई मशीन
2: हाँ,
3: हमार मन थी आप पैसा के वही वही नहीं ना बगीटे के
2: हाँ हाँ हाँ
3: पशु खरीद भी सका था सापन के पैसा के
2: हाँ, मतलब
3: लेका मन बढ़िया बीचे कहत रहे नी में बिस्कुट मिक्सचर चाय सब कर मोर चल जाते मोर घर
2: हाँ, बिल्कुल सही हाँ, बात है, मतलब आप मन स्वरोजगार मिल गई से कहा
3: हाँ,
2: है ना
3: हाँ,
2: आप मन किसी और के भरोसा नहीं
3: हाँ,
2: मतलब आप मन खुद कमा सकते
3: हाँ, खड़े हो सकते
2: हाँ, खड़े हुए है तो अच्छा बात है। तो दीदी आप मन इतनी अच्छा जानकारी दे था, तो मैं ये आखिर में ये पूछना चाहता था कि हमारे जो रेडियो सुनने वाला हमारे दूसरा किसानिन बहनी है
3: हाँ।
2: मतलब आप मन का कहना चाहता था?
3: मैं कहा था घर में खाली नहीं बैठी अब कुछ नहीं कुछ काम करे काम है
2: हाँ हाँ
3: जिंदगी में हाँ भगवान खाए हुई दिशे नहीं
2: हाँ
3: आखी दे है देखे हाँ, बार काम हाँ, दे है करे बार हाथ में
2: हाँ,
3: तो कर लाभ उठाए कुछ कुछ करके दिखाए
2: हाँ,
3: दुनिया में
2: हाँ हाँ
3: कि हम भी किसी से कम नहीं है
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आप मन के बहुत ही अच्छा सोच है, आप मन के जो सुझाव है वह बहुत बढ़िया है। तो दीदी आप मन इतनी अच्छा जानकारी देवा एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जय जोहार।
3: जय जोहार राम राम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: क्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुने संदेश कहा, और संदेश के पहले सुनत रहें भेंटवार्ता जोन में ममता पटेल बतात रहीन कि बहुत ही अच्छा से मन खेती किसानी के काम के साथ साथ सिलाई कढ़ाई के भी काम ला बढ़िया से करत हैं और आमदनी कमात हैं। तो आपो मन भी संगवारी हो, खाली झन बैठे कुछ न कुछ काम जरूर करिए। तो संगवारी हो, बातचीत तो होते रही कहा, आवा सुन लेबो एक ठन सुग्घर अकन के लोकगीत ला।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहेन सुग्घर अकन के लोकगीत ला, जला गाय रहीन है सीताराम साहू और मन के साथी मन। लोकगीत बढ़िया लागिस वही संगवारी हो, कैसे लागिस आप मन जरूर लिख के भेजिए आप मन। और संगवारी हो, हमार और ही चर्चा के विषय हवे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एमन के आज जयंती हवे। तो संगवारी हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हमार देश के ऐसन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी और अद्भुत कवि रहिन, जेकर नाम सुन के आज घलो देशभक्ति के रंग हर रग रग में बहे लगते। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म आज ही के दिन यानी 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हो रहिस। उमन के पिताजी के नाम मुरलीधर और माताजी के नाम मूलमती रहिस। उमन बचपन से ही बड़े साहसी और देशभक्ति के भावना ले भरे रहिन। बिस्मिल जी सिर्फ बंदूक उठा के लड़ाई नहीं लड़िन, बल्कि वो देश के युवा मल्ला जगाए बर क्रांतिकारी संगठन घलो बनाइन। ओमन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य सदस्य भी रहिन। ओकर संग में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे देशभक्त मन भी ओमन जुड़े रहिन। ओमन के संग में और आप मन सुने हुआ संगवारी हो, काकोरी ट्रेन कांड एयर होरी से 9 अगस्त 1925 में, एमें अंग्रेज मन के खिलाफ लड़ाई लड़े बर और हथियार खरीदे बर क्रांतिकारी मन ला पैसा के जरूरत रहिस। एखर बर बिस्मिल जी के अगुवाई में क्रांतिकारी मन 9 अगस्त 1925 काकोरी नाम के जगह में सरकारी खजाना ले जावर ट्रेन ला लूट लेन। एला इतिहास में काकोरी ट्रेन कांड कहे जाते संगवारी हो। ये घटना हर अंग्रेजी सरकार ला हिला के रख दे रही कहा। ओकर बाद ये घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ला अंग्रेज मन गिरफ्तार कर ले रही संगवारी हो। तो ऐसन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ला ओमन के जयंती में हमन सुरता करथन, नमन करथन, वंदन करथन। तो संगवारी हो, आवा एक ठन आओ सुघर अकन के लोकगीत ला सुन लेबो, ओकर बाद फिर चर्चा करबो।

तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहेन सुग्घर अकन के लोकगीत ला। लोकगीत है बढ़िया लागिस वही संगवारी हो, एकर गायक कलाकार रहीन है गरिमा दिवाकर। तो संगवारी हो, हमार और भी चर्चा के विषय है कहा, स्वस्थ मिट्टी बेहतर फसल के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग। तो देखा संगवारी हो, स्वस्थ माटी और बने फसल बर, अच्छा फसल बर संतुलित उर्वरक के प्रयोग बहुत ही जरूरी है। जब तक हमन माटी परीक्षण करवा के ओकर जरूरत के हिसाब ले खाद नहीं डालबो, तब तक फसल के उपज और माटी के सेहत हर दोनों हर सुघर नहीं रह सके। तो संगी हो, संतुलित उर्वरक के मुख्य सूत्र हवे NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। तो ये मान फसल ला मुख्य रूप ले तीन तत्व के सबले ज़्यादा जरूरत थे, अभी बताएं, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। संतुलित खाद के मतलब है कि ये तीनों के सही अनुपात होना चाहिए संगवारी हो। अब नाइट्रोजन के बात करथन यानी यूरिया के, तो ये हर पौधा मल्ला हरियर रखते, हरा भरा रखते और ओकर बढ़वार बर जरूरी हवे, लेकिन एकर ज़्यादा प्रयोग लेका होते फसल में कीड़ा और बीमारी ज़्यादा लगते, ओकरे से एकर हमला संतुलित उपयोग करना है। और दूसरा हवे संगवारी हो, फास्फोरस जो ला हमन DAP और सुपर फास्फेट के नाम से भी जान सकत हन, ये हर जड़ मल्ला मजबूत करते और कल्ला फोड़े में मदद करते। और तीसरा हवे पोटास, ये दाना मल्ला चमकदार और वजनदार बनाते संगवारी हो, जोन पोटास है और फसल ला बीमारी और सूखा से लड़े बर ताकत देते। तो ये तीनों के अनुपात सही अनुपात में हमन डालथन, संतुलित उर्वरक के प्रयोग करथन, तभी हमार जो फसल है वह अच्छा से होते। तो धान और अनाज वाले फसल मन बर संगवारी हो, सामान्य रूप से 4:2:1 यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास के अनुपात इतकी रहले संतुलित माना जाते, 4:2:1 रहले वाला संतुलित माना जाते। और माटी के सेहत बर खाद प्रबंधन के सही तरीका, संतुलित उर्वरक के प्रयोग ला हमन 4 सिद्धांत ले समझ सकथन। सही खाद यानी कि माटी के जरूरत के हिसाब ले हमला का करना है, खाद ला डालना है। सिर्फ यूरिया या सिर्फ DAP डाले के बजाय माटी परीक्षण के हिसाब ले हमला नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों के सही खाद ला हमला चुनना है। और ओकर सही मात्रा यानी कि में जो भी मात्रा है अनुशंसित मात्रा, ज़्यादा खाद डाले ले फसल नहीं बढ़े बल्कि माटी हर खराब होते। कृषि विभाग या वैज्ञानिक मन के कोती ले हमला सलाह लेना चाहिए, उमन के अनुसार ही मात्रा में ही खाद ला देना चाहिए और सही समय में हमला डालना है। कहा फास्फोरस और पोटास के पूरा मात्रा ला बुआई या रोपाई के समय में देना चाहिए। यूरिया ला एक बार में न डाल के 2 या 3 भाग में बांट के ओला छिड़कना चाहिए, एक तक कल्ला फूटते समय और गभोट के समय, ऐसे करके 3 बार में डालना है। और सही स्थान खाद ला खेत में ऐसे डालो कि वो हर सीधा पौधा के जड़ मन ला मिल सके, खास करके फास्फोरस ला माटी में नीचे दबा के देना ज़्यादा फायदेमंद होते संगवारी हो। तो ये तो रही संतुलित उर्वरक के प्रयोग स्वस्थ मिट्टी और बेहतर फसल बर। तो आवा संगवारी हो, सुन ले वो एक ठन और सुघर अकन के लोकगीत ला।

0: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें सुग्घर अकन के लोकगीत ला, जेला गा रही ने प्रकाश देवांगन और माया वैद्या ओमन के साथी मन। तो संगवारी हो, मोर जाय के बेला हो गे कहा, तो जात जात सबो संगी संगवारी मल्ला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार।
1: किसानवाड़ी, अभी आप सुन रहे थे यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8:20 हुए हैं, वक्त है गैर फिल्मी गीत का। सुमित पॉल की आवाज में सुनिए इस गाने को। गीत और संगीत है प्रवीण भारद्वाज की।

सब कुछ। फकीर मंत्रा को आप सुन रहे थे इस गाने में। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए इश्क पर जोर नहीं फिल्म के गाने को, जिसे लिखा है आनंद बख्श ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी और नंदा को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब जब फूल खिले के इस गाने में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। मोहम्मद रफ़ी और नंदा के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे समाचार संध्या। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी।

0: मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार है। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे।

0: इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए में। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ, जिसे लिया गया है गजल फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, मदन मोहन।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज़ में कैफी आज़मी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, एक नगमा आपके नाम किया। चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज़ की आवाज़ें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

0: हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज़ में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गज़ल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गज़ल, मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं और आरडी वर्मन का है संगीत।
1: 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम साइंस एंड टेक।
2: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
3: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद आपका।
3: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
4: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
3: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
4: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा

0: ध्यान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेकर बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मी और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था भारत को, हमारे प्यारे देश को। एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देख जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस

0: लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग

0: केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
2: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को।
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो के भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो

0: हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है, हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या है?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरेवेती चरेवेती चरेवेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरेवेती चरेवेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से, जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है, तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर

0: जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए, बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट हैं, जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है

0: पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ AR VR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना, सिर ऊंचा किया

0: अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और आज जब हम कह रहे हैं पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस ओर हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात के 10 बजे हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम विविध संगीत का। मेनका मिश्रा की आवाज़ में सुनिए इस गाने को, जिसे लिखा है प्रभाकर तिवारी ने, धुन बनाई है नरेंद्र निर्मल ने।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार।

0: एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके गया हेमचंद्र द्वारा। और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था। और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था। और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी। लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में ये तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है। और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में, इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी। और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
8: संदेश से पहले आप सुन रहे थे अदनान समय के स्वर और संगीत निर्देशन में गाने को, बोल थे समीर के। कार्यक्रम में आप सुनिए बी के एन के शब्दों को, संगीत में प्रिया है निखिल विनय रवि पवार ने, स्वर निगम की मधुर आवाज में।

सोनू निगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे इस गाने को। इसके साथ ही विविध संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके रेडियो दोस्त रघुवर के चाव का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं शर्मीले फिल्म के इस गाने को किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। इस गीत के लिए हमें ईमेल और पत्र लिख भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले नांदेड़ महाराष्ट्र से, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम आसिफ, नईम राजा, लाल टंकी चौक रायगढ़ से, चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज, मुकेश, अंकित साहित्या, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई काली राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जैशी, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, डोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे, बलौदाबाजार अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

फिल्म है चोर मचाए शोर, आवाज़ें आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल। साथ में हमारे श्रोता साथी हैं अमरपुर पेंडा से दीपक कुमार, रोशन कुमार बंसीलाल, दिव्यांश श्रीवास्तव, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, बिहारी पटेल, नरेंद्र साहू, संतोष श्रीवास, दिलीप साहू, गेंदु भाई, केवटापारा रायगढ़ से मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनमोल मीनू निषाद, हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी देवांगन, पिंकी देवांगन, लच्छनपुर से सरोजनी रजक, सीमा रजक, कनक रजक, पल्लवी रजक, रश्मि साहू, गीता साहू, रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, सेया जैन, कल्पना जैन, सौर्य जैन, सौरभ जैन, शुभम जैन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म के गाने को मोहम्मद रफ़ी की मधुर आवाज में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत में प्रिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ईमेल लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्विनी विपुल कांबड़े, दतरंगी से विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु लक्ष्मीना यदु, लालपुर से लोकेश यदु समीर यदु, अमरपुर पेंडा से रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी श्रीवास्तव, बाजारपारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज साहिल खट्टी महा पसंद सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी शर्मा ओंकार शर्मा टिकेश्वरी साहू कीर्तन साहू ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम प्रोणिका प्रणामिका उत्कर्ष नेताम ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू भोरी साहू रेखा मोतीलाल साहू बेमेतरा से सुरेश सारथी पूर्णिमा सारथी मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख शवाना आलम चांदी नाज सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर मोहम्मद वकील राही फिरोज आलम नाज प्रवीण।

नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई देवांगन। पलारी छत्तीसगढ़ से ही नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, मोहनपारा, अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक साहू, उमा देवी साहू। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। लाल टंकी चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से चेतन दास साहित्या, शीतल दास साहित्या, मुकेश, मनीष, अंकित, सौम्या, सुशीला, नीलू साहित्या। दर्शिमा से छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। गौशालापारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यीशु, अंशु गुप्ता। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं इज्जत फिल्म के इस नगमे को लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

द बर्निंग ट्रेन फिल्म के गाने को सुनिए मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। प्रसन्न करने वाले श्रोता साथी श्री झूलेलाल करोनी, रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष खुशी, शुभम वाधवानी, कन्हैयालाल तीर्थानी, श्री सिंगरेशी महानदी सियावा पर्वत अंचल ग्राम बिलरगांव से, मिथिलेश दिवांगन, मधु दिवांगन, हिमांशु, अंकित दिवांगन।

0: श्रोता हूँ मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले साथियों के गाए इस गीत के साथ ही अपने रेडियो दोस्त रघुवर की चाव को आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश से दीजिए अनुमति। अगले क्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी फरमाइश, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने वाले हैं, कुछ पल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान